हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
2: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हमें एक उम्र लगती है, कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जे सते ॾींहं वारी जंग बंदीअ जी तजवीज़ रद्द करे छॾी आहे। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जनरल जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त डोनाल्ड ट्रंप खे पक आहे त तेहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो। नवम्बर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघे थो। सखर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पारां एडिशनल सेशन जज जावेद मीराणीअ ते हमले ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाईनि जो बायकाट। वकीलनि जो चवण आहे त सिंध पुलिस जी रटिया आहे जो कोर्ट जे गेट आॾो रुकावटूं विझी हिकु जज ते हमिलो कयो वियो। पुलिस हिन वक़्त ताईं हिकु बि जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे। जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
4: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
7: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
8: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
7: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: It's 12 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: I am Naseem Shah. I face sun and pollution every day. My weapon of choice, golden.

0: इश्तिहार अदा करण लाइ तयार आहे। जटादार तरक़ी मुआशी इंतज़ाम ऐं वापारी वहिंवारीअ खे हथी ॾियण लाइ पुरज़म आहे। न्यूयॉर्क में तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त किथे ऐं विचोभर जी मौजूदा सूरत हाल ते ॻणती आहे। आलमी कानून मूजिबि तकरारनि जे पुरअमन हल लाइ पुरज़म आहियूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान जे सते ॾींहं वारी जंग बंदी जी तजवीज़ रद्द करे छॾी आहे। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त डोनाल्ड ट्रम्प खे पक आहे त तेहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो। नवम्बर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघे थो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प हिकु भेरो ॿीहर आबना हर्मस खे ट्रम्प स्ट्रीट जो नालो ॾेई छॾियो। तस्वीर ॿीहर समाजी वेबसाइट ते जारी करे छॾी। सत शर्त पूरा थियण ताईं अमेरिका खे सज़ा ॾियण जो सिलसिलो जारी रहंदो। आबना हर्मुज़ जो कंट्रोल हिन वक़्तु ईरानी बैरिया वटि आहे। पासदार इनकलाब जे तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन वो बि चयो आहे त अमेरिका कुझु कलाकनि लाइ बि आबना हर्मुज़ खोलाए न सघियो आहे। अमेरिका जी हथियार फिठा करण वारी ख़्वाहिश पूरी न थींदी। इस्लामाबाद जे सेफ सिटी कैमराउनि खे नुक़सान पहुचाइण ते 20 लख रुपया डंड लॻंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऑर्डिनेंस जारी करे छॾी। सेफ सिटी कैमराउनि ऐं नुक़सान पहुचाइण लाइ भड़काईंदड़ ते बि डंड लॻंदो। हड़ताल एहतजाज दौरान थींदड़ नुक़सान जो डंड इंतज़ाम कंदड़ भरींदा। सखर में डिस्ट्रिक्ट बार जो एडिशनल सेशन जज जावेद मीराणीअ ते हमले खिलाफ़ अदालती कार्रवाईनि जो बायकाट। को बि वकील कोर्ट में पेश न थियो। अदालत ॿाहिरां एहतजाज बि कयो वियो। वकीलनि जो चवणु आहे त अदालत जे गेट आॾो रुकावटूं रखी हिकु जज ते हमिलो कयो वियो। पुलिस हिकु बि जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे। सजावल जुणे जो भरिसां ज़मीन जे पुराणे तकरार तां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो फायरिंग कुहाड़ियूं ऐं लठियुनि जे धक लॻण सबब धुरियुनि जा 8 ॼणा ज़ख़्मी। लक ऐं जतोई बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। 8 ज़ख़्मियुनि मां 2 ॼणनि खे लाड़काण इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। धुरियुनि में छिकताण बरक़रार आहे। हैदराबाद जे फुलेलीवाह में नवाब शाह वासी हेस्को मुलाज़िम वेंझंदे ॿुॾी वियो आहे। रेस्क्यू टीम वाके वारी हंधि पहुची परवेज़ अली जी ॻोल्हा शुरू करे छॾी। अफ्रीकी मुल्क कांगो में फौजी जहाज किरी तबाह। ॿिनि आफ़ीसरनि समेत 14 ॼणा अजल जो शिकार। कांगो जे फौजी तर्जुमान चयो आहे त जहाज हादसे में फौत थींदड़नि में फौजी अदालत जो सरबराह ऑडिटर जनरल शामिल आहे। हादसे जा कारण मालूम करण लाइ जांच जारी आहे। ऐं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 अरब इंसाननि जी मौत जो सबब बणिजी सघे थो। बिल गेट्स AI जे ख़तरे खां दुनिया खे आगाह करे छॾियो। माइक्रोसॉफ्ट जे बानी बिल गेट्स जो चवणु आहे त AI जी हाणे वारी तेज़ रफ़्तार मुदाख़लत खां सवाइ वॾो इंसानी ख़तरो बणिजी सघे थी। ॾोहारिन AI जो ग़लति इस्तेमाल करे सघनि था।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा पी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: This program is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: Abhi budhopya GA Hyderabad Matyari FM 91.6 Sindh jo awaaz.
5: O pita ja pitai pita te vasai
4: सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: 1 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: water must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede, or divert Pakistan's share of the waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
1: भारत कंहिं ग़लतफ़हमीअ जो शिकार न रहे। पाकिस्तान जे हिसे जो पाणी रोकण या रुख मोड़ण वारे कंहिं बि कोशिश खे जंग कदम समझियो वेंदो। गडि॒यल क़ौमनि जी जनरल असेंबली खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त नदियूं क़ौमनि जी उञ उझाईंदियूं आहिनि, विरहाईंदियूं न आहिनि। सिंध दरिया जो निज़ाम न रुगो पाकिस्तानी आवाम पर ख़िते लाइ ज़िंदगी जी ज़मानत आहे। भारत पारां सिंध तास मुआदे खे हिकतरफ़ो मुअत

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं ZFM88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एनडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं ताकि आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो सके कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है। तो जनाब यहाँ पर मैं जरा आप लोगों के साथ खुला जो है ना बातें करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मैं जितनी भी बातें आप लोगों को बताती हूँ ना वो सारी बातें जो है वो बिल्कुल सही और जनाब उससे और ज्यादा जो है ना आप लोगों को अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो डिटेल्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए क्यों जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करने वाले तो लाजमी हमारा प्रोग्राम सुनकर आप समझ लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको कितने अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात डी

किया कि स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए और उसके अलावा आपकी स्किन की हिफाजत भी करने के लिए है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात भी जनाब बिल्कुल वाजे आप लोगों को बताते चलूं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो आप लोगों को जनाब जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि ये बाहर तो नाइट क्रीम है लेकिन ये जो आपको रिजल्ट देने वाली ना ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया। तो जैसे आपके घरों में शादियां हो रही हैं, आपकी अपनी शादी हो रही है, तो हर किसी को चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करना है स्टार्ट। स्किन नरम मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, तो आपके चेहरे की जो रंगत है ना वो खुद ब खुद आपको अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है। ये प्रॉब्लम

प्यार से ना बिल्कुल सुकून से लगाइए, प्यार से लगाइए और बस लगाने के बाद छोड़ दीजिए, क्रीम खुद आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगी। आपकी स्किन के अंदर जो इतना जज्ब हो जाने के बाद आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स भी देती रहेगी और दो रातों के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये तमाम बातें हैं जो कि आप लोगों को पूरे प्रोग्राम में बताती रहूंगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे पता चले कि आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं, क्योंकि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको अवेलेबल कराने पड़ेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराने के लिए आप नंबर्स के ऊपर राता कीजिए। नंबर्स के ऊपर राता करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन का फेस वॉश हो, वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और अपनी खूबसूरती को जरा सेव कीजिए, क्योंकि खूबसूरत होना और खूबसूरत रहना दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम खूबसूरत तो बना रही है, लेकिन साथ साथ आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करती जा रही है। तो खूबसूरती और खूबसूरती होंगी क्योंकि डी और इसी

0: कमर्शियल ब्रेक हूं आपसे जल्दी मोटी तमाम डेटी थी आए थे बैठा हो जो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर जो ठीक है ओहिया मोटू था जो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड इन की प्लेस ने व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए और खूबसूरत हो जाइए.
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
0: GFM 91.6.
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
0: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
4: पाकिस्तान जे शहर रग आहे ऐं रहंदो कश्मीरियुनि जी सियासी ऐं सिफारती हिमायत जारी रखी वेंदी. पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ न पर ख़िते जे अमुन लाइ आहे. फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान जी मुलाक़ात. पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच

पक आहे त तेहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो। नवम्बर में थींदड़ विच मुद्दे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघे थो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प हिकु भेरो ॿीहर आबना हर्मुज खे ट्रम्प स्ट्रीट जो नालो ॾेई छॾियो। तस्वीर ॿीहर समाजी वेबसाइट ते जारी करे छॾी। सत शर्त पूरा थियण ताईं अमेरिका खे सज़ा ॾियण जो सिलसिलो जारी रहंदो। आबना हर्मुज जो कंट्रोल हिन वक़्त बि ईरानी बहरिया वटि आहे। पासदार इनकलाब जे तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोवी चयो आहे त अमेरिका कुझु कलाकनि लाइ बि आबना हर्मुज खोलाए न सघियो आहे। अमेरिका जे हथियार फिटा करण वारी ख़्वाहिश पूरी न थींदी। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ताईं खिते में अमुन ऐं तरक़ी मुमकिन नाहे। इलाक़ाई सहकार खे मुयसर बणाइण लाइ ॻाल्हियुनि खां अमली क़दम तरफ़ वधणो पवंदो। न्यूयॉर्क में तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान खिते में गेट वे जो किरदार अदा करण लाइ तयार आहे। आलमी अमुन लाइ बि पुरज़म आहे। पाकिस्तान तकरारनि जे हल लाइ साफ़ीअ जो किरदार अदा करे वकार बुलंद कयो। पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु बीठल रहंदो। पाकिस्तान ऐं कतर खिते में अमुन लाइ अञा बि किरदार अदा करे रहिया आहिनि। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त पाकिस्तान अफ़गाननि जे 40 सालनि ताईं महिमान नवाज़ी कई, हाणे महिमान नवाज़ीअ जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे। पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ते अफ़गाननि खे पनाह ॾेई ग़लती कई। अफ़गाननि खे पंहिंजी सरज़मीन ॾेई ग़लती कई आहे। पीटीआई ते एतमाद करण जी गुंजाइश नाहे। सिंध खां सवाइ ॿिए कंहिं बि सूबे में औरतुनि खे मुफ़्त स्कूटी न ॾिनी पई वञे। औरतुनि लाइ पिंक स्कूटी स्कीम बिलावल भुट्टो ज़रदारी शुरू कराई। बिरपो ख़ास में मुफ़्त पिंक स्कूटीज़ विरिहाइण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त हारियुनि खे हारी कार्ड ऐं पोरेतनि खे लेबर कार्ड ॾिनो पियो वञे। सूबे में 50,000 औरतुनि ड्राइविंग लाइसेंस लाइ अप्लाई कयो आहे। जेकॾहिं पिंक स्कूटीज़ मर्द हलाईंदा त हुनखे बंदि कयो वेंदो।

0: कार्रवाई वॾे मक़दार में मंशात पकड़े वरिती आहे। एस पी आर मूजिबि पाक नेवी जे जहाज़नि हुने नेरमुख जे अरबी समुंड में कार्रवाई दौरान 2800 किलो खां वधीक मंशियात पकड़ी वई। समुंड में शकी ॿेड़े जी तलाशी दौरान गुजन खाननि में लिकायल मंशियात मिली। नेवल चीफ पारां अमले जी आला पेशावरानी सलाहियतनि जी साराह कई वई। पकड़ियल मंशियात जे आलमी मार्केट में मालियत अटकल 75 करोड़ रूपया आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। मैं दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

बिल्कुल सुना, डे स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि जब आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो फेशियल के रिजल्ट्स मिलने वाले, और महंगा सा फेशियल जो कि भैया आप शायद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा वाला सीन है कि भैया आप कहते हैं घंटों कौन बैठे सैलून में और कौन इतरो खफो कराए बाबा इन लाइ तमाम बस राजो सुमण खां पहिरीं डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं पोइ ॾिसो कमालात त छा तव्हांखे मिले थी खूबसूरती जेका तव्हांखे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ मिलंदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खां फौरन बाद। भई मां तव्हांखे ॿुधाईंदी अलाए हिकिड़ी ॻाल्हि, त जॾहिं तव्हां मार्केट में वेंदा न, तव्हां बेशक एॾा सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कया हूंदा या एॾा सारा प्रोडक्ट तव्हांखे इम्प्रेस करे चुका हूंदा जॾहिं तव्हां वेंदा हूंदा मार्केट, पर जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा न, हिन में ॻाल्हि ई हिकिड़ी अलॻि आहे। छो त जॾहिं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां इस्तेमाल कंदा त हिन जे अंदर जेको आहे न वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स आहिनि, अल्फाबूटीन आहे, कोजिक एसिड आहे, ग्लूटाथायोन आहे, ऐं सिर्फ़ ॿ रातिन जे इस्तेमाल में तव्हांखे ॾींदी जनाब सफ़ा भलो रिज़ल्ट, ऐं रिज़ल्ट बि अहिड़ो जेको हमेशा तव्हांजे चेहरे ते बरकरार रहण वारो आहे। ऐं ईअं न त तव्हां ॾिठो हूंदो न कुझु प्रोडक्ट अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके भई प्रोडक्ट अगरि तव्हां इस्तेमाल करणु छॾे ॾींदा आहियो त तव्हांखे जेके रिज़ल्ट मिलंदा आहिनि उहे बि ख़तम थी वेंदा आहिनि, तव्हांजा उबतो तव्हांजी स्किन ते इलाही सारा जेके न उहे निशानात अची वेंदा आहिनि या फिर इलाही तव्हांजी स्किन ख़राब थी वेंदी आहे। त डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करण खां फौरन बाद ई तव्हांखे रिज़ल्ट जेके मिलंदा उहे हमेशा तव्हांजे चेहरे ते मौजूद हूंदा, बरकरार हूंदा। त अगरि तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करणु चाहियो था त तव्हां बेशक कयो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल हर स्किन जे मथां करे सघिजे थो, चाहे तव्हांजी स्किन केॾी ई सेंसिटिव छो न हुजे, छो त हीउ मेडिकेटेड फार्मूलो आहे। नो टेंशन बाबा, बेफ़िक्र थी करे इस्तेमाल कयो, मर्द हज़रात ख़वातीन हर कोई लगाए सघे थो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा निशानी आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां वठो न त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डबी ते हिकु डॉक्टर माई जो फोटो अथव, ऐं डॉक्टर माई जो फोटो ॾिसी करे तव्हां मतिलब जेको आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे वठी सघो था। ॾाढी वीआईपी सुहिणी डॉक्टर माई आहे, सो अगरि तव्हां वठो त इहो फोटो तव्हां लाज़मी ॾिजो, ईअं न त दुकानदार तव्हांखे बाबा कोई ॿी क्रीम ॾे ऐं चवे हीउ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अथव, तव्हांखे पढ़णु न ईंदो हुजे या फिर तव्हां वीचारा मासूम आहियो। त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इहा निशानी ॾिसी वठो ऐं सम्झी वठो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे, सम्झी विया। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तव्हां इज़ीली अप्लाई करे सघो था। उन खां अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां वठो त हुन सां गॾु डी स्किन जो वठो फेस वॉश वठण न विसारींदा, छो त फेस वॉश जेको यूज़ आहे न तव्हांजी स्किन जे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद साबित रहंदो। ऐं जॾहिं बि फेस वॉश तव्हां इस्तेमालु कयो त इन चीज़ जी बि तव्हांखे मतिलबु गारंटी आहे त तव्हांजे चहिरे ते जेके निशानात आहिनि, एक्नी आहिनि या खोड़ सारा जेके प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि उहे सभु ख़तम थींदा। ऐं डी स्किन फेस वॉश जेको आहे उहो हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयारु थियल आहे, हिन जे अंदरि हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड थियल आहे, ऐं हीउ जेको सीरम हूंदो आहे तव्हांजी स्किन जे लाइ ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे। जीअं तव्हांजी स्किन जे लाइ कुझु चीज़ूं ज़रूरी हूंदियूं न, बिल्कुलु वेसे ई तव्हांजी स्किन जे लाइ हाइलोरोनिक जेको एसिड आहे न इहो बि ज़रूरी आहे। सो तव्हां अगरि इस्तेमाल करणु चाहियो था त तव्हांखे ख़बर हुजे त डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे इहो तव्हांजी स्किन जी अंदर जेको आहे न अंदर ताईं वञी तव्हांजी स्किन खे डीपली क्लीन कंदो आहे, ऐं तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट रखंदो आहे, ऐं तव्हांजी स्किन खे हमेशह मॉइस्चराइज़ रखंदो आहे। अगरि तव्हां इलाही साबुण लॻाया आहिनि या तव्हां इलाही सारा फेस वॉश ट्राए कया आहिनि पर तव्हांजी स्किन जेका हमेशह रुखी सुखी हूंदी आहे या तव्हांजी स्किन जेका आहे न उहा ईअं तव्हांखे महसूस कराईंदा त बाबा इलाही जल्दी ऑयल निकिरी अचे थो चेहरे ते, तव्हां इन जी वजह सां घड़ी घड़ी तव्हां पंहिंजो फेस वॉश कंदा आहियो, त घड़ी घड़ी फेस वॉश करण खां थोरो अवॉइड कयो ऐं तव्हां बसि डी स्किन जो फेस वॉश ट्राए करे ॾिसो। ऐं जॾहिं तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश ट्राए कंदा न तव्हांजी स्किन ते जेको एक्स्ट्रा ऑयल हूंदो आहे उहो बि ख़तम थी वेंदो ऐं तव्हांजी स्किन हमेशह मॉइस्चराइज़ रहंदी, ऐं तव्हां पाण महसूस कंदा त बाक़ी वाह जी शइ इस्तेमालु करे रहिया आहिनि। जेको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे या बाबा इलाही प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे, उहो डी स्किन फेस वॉश बि अगरि तव्हां ॾिसंदा त तव्हांखे महसूस थींदो बाबा वाक़ई ही प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहे। ऐं बिल्कुलु इहा चीज़ तव्हांखे मतिलब हाणे ज़हन में ईंदी हूंदी त अगरि प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहिनि त महांगा मिलंदा हूंदा, बिल्कुलु महांगा न आहिनि, मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि। सो तव्हां बि इस्तेमाल करे सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश, मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिलनि पिया बाबा। सो वञो ऐं वठी अचो, ट्राए करे ॾिसो, ट्राए करण में छा ई वञे थो भला, ट्राए कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी वाकई बाबा कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि सही आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी। ऐं तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त मूंखे ज़रूरु ॿुधाईंदा कयो, शेयर कंदा कयो, छो त शेयरिंग इज़ केयरिंग हूंदी आहे। अच्छा, मूं तव्हां खां सवाल पुछो आहे त किस चीज़ को देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इहो तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा। ऐं गॾो गॾु तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था त तव्हां इहो बि मूंखे ॿुधायो। ऐं हा, ॿी ॻाल्हि तव्हांखे नंबर ॿुधायां जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल भी कराए सको था। सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तुम पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो था त बाबा तव्हांखे डायल करणो आहे 0332738439 3283484909 ऐं ॿियो नंबर आहे 0312502509 07 3312508449 07 3312508449 07

हो पंजवी है नमस्ते सत्तर ही नंबर स्टाइल कयो पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ए डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो ए मुखे बुधायो त तमा इस्तेमाल कयो या अन्या तई कोन कयो न कयो त छो न कयो ए कयो त पो तांके रिजल्ट्स केड़ा मिलया आहे अच्छा जेके भी सोना सोना भाईर भेनर असा के बुधन पया ही प्रोडक्ट ता सबनी जलाया है सो इस्तेमाल करी मुखे जरूर बुधाय जो जे मुखे खबर पई ए जदी ना मुखे बुधाईदा यो त भारी असा के हेड़ो रिजल्ट मिलियो आ हेत्रो असा के फायदो पोतो आ त यकीन कयो मुखे लाई खुशी थिंदी आ सो ता अगर इस्तेमाल कयो पया तो मुझे लास्ट में बुधाई ना कयो।

बहुत ही प्यारा गाना हम एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ आप लोग मौजूद हैं जिस गाने की फरमाइश हमें जेन ने कर दी थी, तो जेन ये गाना हम सुनेंगे आप लोगों के साथ साथ। और दर्द दिल कहती है कि अगर तकलीफ देने वालों को ये मालूम हो जाता कि हमारे दिलों में उनके लिए कितनी खैर है तो वो कभी ऐसा ना करते और वो फिर ज्यादा करते मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर उनकी खबर पेटी हुई तो असा दिल में उन्हें केतरो खेरा तो असा तकलीफ हडींदा। यह चीज हमेशा याद रखना, कोई कोई भी न दुनिया में शायद कहो एहसास ना ही कह।

0: बात है भाई, ये बहुत ही प्यारा गाना है जो कि हम एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ अमानुल्लाह दल हमारे साथ मौजूद है। अमानुल्लाह भाई कहते हैं इट्स मी अमानुल्लाह फ्रॉम राजू खानानी। ओके, अगर मैं सही नहीं रीड करी तो माजरत करते हैं। ठीक हूँ, आप बताएं अमानुल्लाह भाई आप कैसे हैं? और अहद भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक हो गया। और गुलाब जो गुल कहते हैं अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। हाँ अच्छा, उन खां अलावा आहद भाई तहां गाने जी फरमाइश कई, मां ॾिसां थी तव्हांजी पसंद जो गानो भी हलाए वठूं था। हिदायतुल्ला कहते कि अदा बारात नहीं आई कल आनी थी लेकिन अब वो 4 तारीख को आएगी, तो समझा ये ऐसा क्यों भला, ये तो इंडियन शादियों के जैसा सीन हो गया। चलें जी। और फहीम भाई कहते हैं कि
1: गुमनाम था मैंने जाना है खुद को तेरे नाम से, सुन ले तेरी हर।
0: ऐसा लगते हैं कि पर्ची वयो शिकायत जो दफ्तर या फहीम सुधरी वयो आहे, हुन मोट में मुर्गी फरमायो सरन की शिकायत केर करे। आई हाय। अच्छा अनवर भाई कहते हैं टॉपिक बुधायो जहानत चेक कजे सिदरा जे प्रोग्राम में। टॉपिक मुझे ख्याल में आने तब बुधी वरतो हूँ। मुगल उमरानी भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम कहते हैं। और निदड़ी हमारे साथ ही कहती है शलावा ही शलावा, निदड़ी इज
1: किसी जुबान पे यूं ऐसे को
0: बैक होता है सरी पगली बैक बैक। कहती है बचना है हसीनो निदा आ गई। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बच रहे हम। और उनके अलावा दिया कहती है सिंड्रेला। हाँ जी। निदड़ी कहती है कि बुखार को चकमा देकर आ गई मैं, बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया। और कहती है मासूमी का मौसमी का जूस, सही सही सही सही लिखा तो सही करो। और उनके अलावा ओके चाचा खालिद बहुत शुक्रिया आपका। और अनवर भाई कहते हैं कि कदें कदें अमां जो आवाज़ स्पीड में हूंदो आहे त ईअं लॻंदो आहे प्रोग्राम रिकॉर्ड पियो लॻे। रिकॉर्डेड प्रोग्राम बि त इहो ई हूंदो आहे जेको हीअं मतिलबु रोज़ कंदी आहियां। उहो हीअं करणो त न पवंदो आहे मूंखे अलॻि सां रिकॉर्ड, इहो बि इहो ई प्रोग्राम हूंदो आहे जेको डेली कंदा आहियूं।

हाँ बिल्कुल अनवर भाई सही था चो रंग जेको भी हुए पर एक रंग हो इन लाइन चवानी तो तुम सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर पानी चेहरे ते गर्दन ते हथन पेरन ते जी ताकि को ऐसे तीन चे तो बाबा यो वरी सतरंगी छो था घुमंदा वतो थी तुम इस्तेमाल कर बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तक रिजल्ट दी सफा भलो वीआईपी लश पश थी वेंदा। अच्छा निदड़ी कहती है कि सलाम टो साइमा मीर मैंने सुना उसने मुझे याद किया था उस दिन और उसको बोला अच्छा कहती है उसको बोलो अब मैं फिरोज की फैन नहीं हूँ। अरे भाई इतना जल्दी आपने पार्टी बदल ली कहती अब आतिश की फैन हूँ। अब साइमा को कैसे पता कि आतिश कौन है।

0: हां जी हो हो बहुत अच्छा बहुत अच्छा अली पोस्ट के लाके शेयर करो था वो कौन है
1: तो खत लिखा तभी रोई पवा दे तार कया तभी रोई पवा के ससुर सल्या तभी
0: अच्छा निजाम भट्टी कादरी भाई में सुन रहे हैं निजाम भट्टी कादरी भाई तहां जो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया और समाटू कहते हैं कि अच्छा गानो मा दिसांती हलाई वठूं था तवां जो और इन का अलावा गुलाब जो गुल कहते हैं हां बाबा डाडू दुखियो है डाडू दुखियो अच्छा किशोर भाई कहते कि तू सिर्फ पानी में पेन घुमाए दे जहां मां लिखा छा पयो लिख जी अलाई छा वयो मां वो ही दिसी करे हेरन थी वियम तो तमा वाकई यो मो बताया मेरे वो जरा बात समझ नहीं आई थी हजार भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम हजार भाई और फरवा भी हमारे साथ नाजुदी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक मुखे समझ न आयो पर एतरो चवंदस तोखे दिसण लाए तो जड़ी नजर हुजन जरूरी आए

इंसान बस मजबूर न हुजे मां चवंदी आहियां सभु कुझु हुजे बसि इंसान मजबूर न हुजे मजबूरी जेका हिन लाइ छा छा कराए छॾींदी आहे ऐं बिल्कुलु जी अगरि तव्हां बि ख़ूबसूरत थियणु चाहियो था ख़ूबसूरत थियणु तव्हांजी मजबूरी आहे या मजबूरी नाहे तभी तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु तव्हांजी ख़ूबसूरती में सफ़ा इज़ाफ़ो आणे छॾींदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां चाहे मर्द हज़रात आहियो ख़वातीन आहियो हर कोई इस्तेमालु करे सघे थो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो बाबा ऐं सोणा थी वञो।

चाचा खाले तुम भी टॉपिक ते जवाब दिनो है। तुम गानों भी प्लस में लिखी सड़ी वाई हलोड़ी तरक्की।

0: अच्छा ये सॉन्ग असा के डेडिकेट अच्छा मतलब फरमाइश की कयो डेडिकेट भी कयो आए प्लस में सो ये हमारे साथ है सलाम सिद्रा केड़ा हाल आहिन दुआ है हमेशा सलामत हो जो शो नाइस वॉइस नाइस सॉन्ग प्ले कर जो तू जो शहर डिसन मुझी मजबूरी मुमताज लाशारी डेडिकेट यू फ्रॉम योर लिसनर रोफी रोफी हमें सुन रहे हैं जी रोफी को वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया वैसे रोफी आप प्रोग्राम में मतलब कम कम शामिल क्यों होते हैं आप हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं तो आपको वेलकम कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा ठीक है और ये हमारे साथ कहते चाचा खालिद को सलाम मंजूर अली खास के लिए झंडो मरी खां मंजूर भाई तांजो मोहब्बतवान प्रोग्राम बुधो पया और ये मौजूद है हमारे साथ हबीबुला थेबू सॉन्ग बुधराय जो हाजिर बा सब्र त करे मुनवर मुगल भाई हमारे साथ कहते मीरपुर खास से चाचा खालिद के लिए फैमिली पैक बनवा दो डी स्किन का 2.5 किलो वाला डब्बा हम भी लेंगे 2.5 किलो वाला डब्बा हलड़ी विसगाल में दम आए 2.5 किलो जो डब्बो हो जाए तो सब बस लगाइन फैमिली पैक हुए का टेंशन वैसे ये डो वे तो एडो वो पैक हों तो वरी मानू चंदा बाबा हाँ असा नंढड़ी नंढड़ी क्रीमियों नंढड़ा नंढड़ा डब्बा टो इन कर नंढड़ा नंढड़ा डब्बा जो आसानी थे तवे तुम घर जो एक भाती वो पर्सनल लगाए पर्सनल एक वी डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुए बस वो लगाए ना ये सुना सुना रहा कोई भी कें क्रीम न खणे कोई भी कें फेस वॉश न खणे तब वो सब भाई हमारे साथ चाचा खालिद के लिए फैमिली पैक बनवा दो डी स्किन का 2.5 किलो वाला डब्बा हम भी लेंगे 2.5 किलो वाला डब्बा हलड़ी विसगाल में दम आए 2.5 किलो जो डब्बो हो जाए तो सब बस लगाइन फैमिली पैक हुए का टेंशन वैसे ये डो वे तो एडो वो पैक हों तो वरी मानू चंदा बाबा हाँ असा नंढड़ी नंढड़ी क्रीमियों नंढड़ा नंढड़ा डब्बा टो इन कर नंढड़ा नंढड़ा डब्बा जो आसानी थे तवे तुम घर जो एक भाती वो पर्सनल लगाए पर्सनल एक वी डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुए बस वो लगाए ना ये सुना सुना रहा कोई भी कें क्रीम न खणे कोई भी कें फेस वॉश न खणे तुम सब वो सब लगाओ चाचे के चौं था बाबा चाचा तुम अलग से डब्बी वो या सजो जो पैक इन ना फैमिली पैक तुम वो वी सो अलग से 2.5 किलो पैक खाने की जरूरत ही कोने का तो तुम इस्तेमाल कंदा रहो ही खूबसूरत इंदा रहो ये टाइम थे बाबा वो था नंढड़ा ब्रेक तो जल्दी मोटी चाहती तुम्हारी गाल बुधा थी मोटी अच्छे इतने वेठा हुई प्रोडक्ट लगाइए और खूबसूरत हो जाइए
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: इट्स 2:30 PM This time check is brought to you by
4: Hemme Diamond Glow Bleach Cream जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness चमक ऐसी diamond skin जैसी Hemme Diamond Glow Bleach Cream
5: This program is brought to you by
6: Bank Islam ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया compliant gold based financing
7: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: माइक्रोबीट सर्मुलेशन जी एडिशन थियल आहे। ये जेके चीजूं हूंदियूं आहिनि, ये महंगनि महंगनि फेशियल जे अंदर एड थियल हूंदियूं आहिनि। जेके ख़वातीन मतिलब पार्लर वारियूं मूंखे ॿुधंदियूं हूंदियूं, उन्हनि खे बिल्कुल ख़बर हूंदी त ही वाइटमिन बीट्स ऐं माइक्रोबीट्स जेके हूंदा आहिनि उहे केतिरा इम्पोर्टेंट हूंदा आहिनि तव्हांजे चेहरे ते निखार ॾियण जे लाइ या तव्हांजी स्किन खे ब्राइट करण जे लाइ। सो तव्हांजे लाइ टू इन वन फार्मूलो आहे। जेके पार्लर जूं अधियूं असांखे ॿुधनि पियूं या जेके पार्लर जूं छोकिरियूं असांखे ॿुधनि पियूं, उहे बि बाबा पंहिंजे तव्हां कस्टमर्स ते डी स्किन

एक्ने क्रीम अप्लाई करे सघो था उन्हनि खे ॾस ॾेई सघो था भई तव्हांखे एतिरो भलो मतिलबु हुन जो रिस्पॉन्स मिलंदो तव्हां पाण ई चवंदा वाह साईं वाह तरक़ी आहे ॿियो छा ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां अगरि तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे त उहो बि लाज़मी वठिजो उहो इग्नोर न कजो हुन खे इग्नोर न कयो बाबा ऐं अगरि तव्हांजे एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऑलरेडी अवेलेबल आहे पर फेस वॉश कोन थो मिले त तव्हां नंबर ते राबितो करे फेस वॉश खे बि अवेलेबल कराए छॾियो जे ॿई चीज़ूं मिलनि ऐं तव्हां वञो बस परचेज़ करे अचो ऐं हा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा निशानी आहे त बाबा हिन जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे ऐं तव्हां नालो ॾिसी करे ऐं फोटो ॾिसी करे पोइ तव्हां सही प्रोडक्ट परचेज़ कजो सही प्रोडक्ट परचेज़ करे नकालो से होशियार रहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज़ करते रहिए।

मेला नसीब बन जाए तो यही डायल करे बैठो 03 50 207 ॿुड़ी 3 50 50 9 07 ॿुड़ी 3 1 5 0 9 7 विच में 0 अची वियो पर इग्नोर कजो हुनखे ॿुड़ी लिखजो 03 27 38 43 09 ॿुड़ी 332 73 84 309 ॿुड़ी 3 3 2 7 3 8 4 3 ॿुड़ी 9 ही नंबर सां राबितो कयो ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश खे अवेलेबल करायो. ख़ूबसूरत सभु थियनि बाबा तव्हांजो पीछे रहिजी वञो. तव्हां बि ख़ूबसूरत थियो ऐं ख़ूबसूरती जी दुनिया में कदम रखो ऐं चओ यस असां बि इस्तेमालु कंदा आहियूं डी स्किन ब्यूटी क्रीम.

अच्छा हमारा ना भाई, आपको जो भी डिटेल्स मतलब जाननी हो ना कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं या प्राइस क्या है या हम कहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, आप उनको अपने सिटी का नाम बताइएगा, तो नंबर इसके ऊपर रابطہ कीजिए, जो नंबर अभी आपको बताया उनके ऊपर रابطہ कीजिए, आपको वो तमाम डिटेल जो है ना वो दे देंगे, तो आप जरूर नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिएगा, ठीक है।

भी ॾाढो खूबसूरत गानो, ही गानो वाकई खूबसूरत आहे। मुख्तियार भाई जी आवाज़ में गानो, मुख्तियार भाई बि ॾाढो सुठो इंसान आहे माशाल्लाह। अलाह सां हिननि खे हयाती ॾे, सिहत ॾे, ऐं असांजो प्रोग्राम शौक़ सां ॿुधंदा आहिनि। बिल्कुल जी, ऐं मुख्तियार भाई इलाही सारी तारीफ़ूं कंदो आहे। अधी सिधरा मुख्तियार भाई, तव्हांजो मोहबतूं ऐं तव्हां एतिरी सिक कुर्ब ऐं मोहबत ॾींदा आहियो, सो ख़ुशि आहियूं। ऐं हुन खां अलावा जेको आहे, तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कजो, अगरि प्रोग्राम ॿुधो पिया त वैसे ॿुधंदा आहिनि।

अच्छा आप भाई लिखते हैं कि मशहूर होने का शौक नहीं हमें, बस आप हमें जानते हैं इतना काफी है। हाओ सही सच हो। और निधि कहती है कि बस मैं ही सबका ख्याल करती हूँ इस दुनिया में। हाँ सही थी यही मान दी हम और तुम। अच्छा स्मार्टू लिखते हैं कि तुम्हें अरे ये शायरी मत भजी भाई। एडवोकेट कामरान खान सार्की हमारे साथ कहते हैं हेलो सिस्टर नाइस यू थैंक यू वेरी मच एडवोकेट भाई साहब। और उनका अलावा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे शाम को चुप करके सुनने देना सॉन्ग, अभी तो चुप नहीं करोगी तो इस वजह से शाम का बोला। हाँ शाम हमारे प्रोग्रामों में तो फुल गाना बुधराई दिया सोते भले फरमाइश करना गयो। और अमानुल्लाह भाई कहते हैं हमारे शहर में डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करवाता हूँ। बिल्कुल जी अवेलेबल कराइए, जो नंबर आपको बताया उसके ऊपर लाजमी राब्ता कीजिएगा ठीक है। अच्छा सिया सिया वाले गाने जो सिख लगी था छा भला किशोर भाई हुकुम कयो हलायूं था

अरे 14 हिते फेक मानू एतरा आए ने समझ नथो अचे त असल में आहे के असल सिर्फ माया यस द्रा वन एंड ओनली आई उन खा अलावा भाई मां एंजॉय थी क्या रियली इन चीज के भाई आप लगे हाथ पोस्ट को लाइक और शेयर भी कर दिया करे जो फेक लोग आ रहे हाँ जी पोस्ट को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल भी करते रहे क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों को बहुत खूबसूरत और प्यारा भी बना देगा तो ये जो आप फेक फेक बनकर आते हैं ना तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए आपकी खूबसूरती में इजाफा आ जाएगा और खूबसूरत बनने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ खवातीन ही इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो मर्द हजरात भी लगाइए खवातीन भी लगाइए और खूबसूरती की दुनिया में छा जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी चीज है जनाब की डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिका ही बाबा तव मेडिकेटेड फार्मूलो है यानी कि डॉक्टर्स मिली करे इन प्रोडक्ट तैयार किया है तो को भी टेंशन की गाल कोने का तो ही प्रोडक्ट असा लगाए सकूं था या न था लगाए सकूं असि स्किन सेंसिटिव है तो असके मतलब क्रीम सूट न कन्द तो तुम सब लगाए सको था डी स्किन ब्यूटी क्रीम नालो वी तलब करो करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए।

हां जी और नखा अलावा तमा पोस्ट के लाके शेयर कयो कोन दर्द दिल कहती कि डी स्किन फेस वॉश लेकर आई हूँ चंदा क्या बात चंदा की बात कैसे ना मानती मां सदको वना सोणी ता आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम ता पहिरां का इस्तेमाल कयो पया ई न

क्या बात है, बहुत ही अच्छा प्यारा गाना. और यहाँ पर टाइम की जरा किल्लत है तो आप लोगों के मैसेजेस जरा मैं खत्म कर लेती हूँ. यहाँ पर हमारे साथ हैं जी खालिद अहमद पिताफी. खालिद अहमद पिताफी भाई हमें सुन रहे हैं जी घोटकी से, आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया के साथ. नजर अली हमें सुन रहे हैं शहदाद कोट से, आपको भी वेलकम हो गया. और निजाम भट्टी कादरी भाई कहते हैं वाह नाइस शो, थैंक यू, जबरदस्त जियो, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई. अच्छा चाचा कहते हैं सिंधी अच्छी बोलती हैं आप. हाँ चाचा तांजो गानो असा पंच बजे वाले प्रोग्राम में बुधनदास सिंह, ठीक है. और जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए. और यहाँ पर स्मार्टो कहते हैं अच्छा सही अच्छा सही है. और मोहम्मद जमान कहते हैं बुआ जी हमारा नहीं अभी तक तो नहीं आया. और हिदायतुल्लाह कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल आप भी, और नदड़ी आप भी, सब सब सब. अब्दुल्ला अली हमारे साथ कहते हैं अकरी चौधरी का अली गुलाबशर, नियास मोहम्मद, इमरान अब्दुल बाकी, अब्दुल्ला माशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम आए, थैंक यू वेरी मच. अब्दुल्ला भाई तांजो मोहब्बत वन प्रोग्राम की पसंद कयो पया, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो. दड़ी नी जात सुनी आज रात. और ये जी हमने एक और गाना लगा लिया है, ये गाना होगा मंजूर सखिरानी की आवाज में, ये मतलब बस सुनिएगा, पता नहीं क्यों मुझे ये गाना थोड़ा अजीब लग रहा था, मैंने सोचा चलो लगा ही लेते हैं. उनके अलावा अगर तहां भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना चाहो था तो लाजमी कजो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल जरूर करायो. जी तमाम जिला यह चीज आसान थी वे तो बस ना वनो ही पाने करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के परचेज करिए.

हिदायतुल्लाह तो मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा। रही खोसू भाई में सुन रहे हैं हैदराबाद से, भाई को वेलकम कहते हैं। जवान मोहम्मद बचल शंबानी भाई में सुन रहे हैं, थैंक यू। प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जुलरी खां खालिक लाशारी शो तवाजो वीआईपी आए फरजाना परवीन मुझे हथ जो रुमाल प्ले कर जो मैं कोशिश क्या थी भा पर तक गानों थी सो तो शाम वाले प्रोग्राम में सुबह बुधी वी। और ये मौजूदी बाजी सिदरा क्या हाल है आपके शो वरी नाई से मीरपुर खास का उम्मीद अली लाशारी सलाम चौवन कुमार खालिद जुड़े जो अदील अबड़ो ओके। और कहते हैं जी बाजी सिदरा आज तो बहुत हंस रही हो, क्या तनख्वाह मिली है क्या? ग्रेट वॉइस है मीरपुर खास का उम्मीद अली लाशारी सलाम किशोर कुर्बान खास के लिए अजीज सोलंगी और असलम महर एंड एंड के बाद जो मैसेज गुम पघार बाबा आखिरी महीने में कंखे मिलन दिया है असा के तो कौन मिलन दिया है। उनके अलावा ऐसे शो खालिद आलम खान हमारे साथ ही मोहम्मद आलम खान भा तुम मोहब्बत प्रोग्राम बुध पे। और ये हमारे साथी बाजी सिदरा आपका शो सुपर हिट है और आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है मीरपुर खास का उम्मीद अली लाशारी सलाम खाले जुड़ी जो अदील अबड़ो चौवन कुमार अंकल गफूर आकिब लाशारी और आरजी गुलनाज प्लीज प्ले शमन शमन बुधी वठूं था। उनका अलावा कहते बाजी सिदरा लोग टाइम के बाद आपका शो लॉन्ग टाइम के बाद आपका शो सुन रहा हूँ एंट्री कबूल करना मीरपुर खास का उम्मीद अली लाशारी भाई सलाम डिनोआई अक्सा यासमीन एंड मी तो थैंक यू प्यारे भाई। और गोट गाजी खान बुर्दी बलोच खां अली बुर्दी बलोच अरबेलो शकील अहमद जाकिर अली बुर्दी बलोच अरबाब अली मोहम्मद कबूल वकील अहमद कहते असा खां पोए तां जो मैसेज जको न भाव वो थोड़ो मिसिंग पार्ट थी वयो आ सो मोहब्बतूं आहिनि प्यारे भाउ जो प्रोग्राम बुधो पया आहिनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल लाज़मी कजो अगर नथा कयो त करे वठो अगर कयो पया त मूंखे ॿुधाईंदा हलो। और ये मौजूद है कुंज अस्सलाम वालेकुम एफएम रेडियो की कुंज खुश रहो हमेशा कुंज जलाल का सॉन्ग तो प्ले करो सुभाणे ॿुधंदासीं हाँ मोकल जो टाइम थो आ न तो फरमाशन के थोड़ो स्टॉप लगायो हिदायतुल्लाह मैंने तभी बोला थोड़ा सा अजीब लगा ओके सो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपको नहीं मिल रही तो जो नंबर आपको बता रही हूँ उनके ऊपर रब्ता जरूर कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाएंगे चाहे आप किसी भी गांव में रहते हैं किसी भी सिटी से ताल्लुक है आपका बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर इजीली डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराते रहिए। और जी अब्दुल जी कैसर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से इजाजत वरी तौर से मुझे मुलाकात जेका वो थे पई पंजे बजे वाले प्रोग्राम में सो पंजे बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन करना ही पांजो ओ हिनो सरो ख्याल रखना किते का गलती थी हो जाए तो माजरत करें था जो को फीडबैक रही जी वो गानड़ो शानड़ो रही जी वो है तो माजरत करें था बाबा मोकलानी ना है सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: भारतीय जो किरदार अदा करे वकार बुलंद कयो। पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु बीठल रहंदो। पाकिस्तान ऐं कतर खिते में अमुन लाइ अञा बे किरदार अदा करे रहिया आहिनि। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त पाकिस्तान अफ़गाननि जे 40 सालनि ताईं महिमान नवाज़ी कई, हाणे महिमान नवाज़ी जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे। पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ते अफ़गाननि खे पनाह ॾेई ग़लती कई। अफ़गाननि खे पंहिंजी सरज़मीन ॾेई ग़लती कई आहे। पीटीआई ते एतमाद करण जी गुंजाइश नाहे। सिंध खां सवाइ ॿिए कंहिं बि सूबे में औरतुनि खे मुफ़्त स्कूटी न ॾिनी पई वञे। औरतुनि लाइ पिंक स्कूटी स्कीम बिलावल भुट्टो ज़रदारी शुरू कराई। मीरपुर ख़ास में मुफ़्त पिंक स्कूटीज़ विरिहाइण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम महमण चयो आहे त हारियुनि खे हारी कार्ड ऐं पोरेतनि खे लेबर कार्ड ॾिनो पियो वञे। सूबे में 50,000 औरतुनि ड्राइविंग लाइसेंस लाइ अप्लाई कयो आहे। जेकॾहिं पिंक स्कूटीज़ मर्द हलाईंदा त उनखे बंदि कयो वेंदो। बलोचिस्तान जे ज़िले दुके में रोड तामीर कंदड़ कंपनी जे कैंप ते दहशतगर्दनि जो हमिलो। फायरिंग जी ॾेवट दौरान हिकु सिक्योरिटी गार्ड शहीद थी वियो, हिकु ॼणो सख़्त ज़ख़्मी थी पियो आहे। दहशतगर्द 18 पोरेतनि खे अॻवा करे विया आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सिस तर्फ़ां मुगवी पोरेतनि जी बाज़ियाबी लाइ सर्च ऑपरेशन जारी आहे। पाक बैरिया जे अरबी समुंड में कार्रवाई, वॾी मक़दार में मंशियात पकड़े वरिती। ISPR मूजिब पाक नेवी जे जहाज़नि हुनैन ऐं यरमुक जे अरबी समुंड में कार्रवाई दौरान 2800 किलो खां वधीक मंशियात पकड़ी वई। समुंड में शकी बेड़े जी तलाशी दौरान गुजन खाननि में लिकायल मंशियात मिली। नेवल चीफ पारां अमले जी आला पेशावरनि सलाहियतनि जी साराह कई। पकड़ियल मंशियात जे आलमी मार्केट में मालियत अटिकल 75 करोड़ रूपया आहे। सखर में डिस्ट्रिक्ट बार जो एडिशनल सेशन जज जावेद मीराणीअ ते हमले ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाईनि जो बाइकाट। को बि वकील कोर्ट में पेश न थियो। अदालत ॿाहिरां एहतजाज बि कयो वियो। वकीलनि जो चवणु आहे त अदालत जे गेट आॾो रुकावटूं रखी हिकु जज ते हमिलो कयो वियो। पुलिस हिकु बि जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतराई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि एक दफो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां ख़मीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: ये FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 9 सिंध जो
1: जिस धरती से जुड़ा है आज
2: उसी खित्ते की आवाज,
1: जीए एफएम 9
2: सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: GA FM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमेरिका इसराइल ईरान के कमजोर कण में नाकाम वया है। मुस्लिम मुल्कन के गढ़ायो को वने ईरानी कौम अमरीकी इसराइली साजिश खिलाफ जमी बीठल है। अल जज़ीरा के जनरल इंटरव्यू में ईरानी सदर मसूद पेशिकियान है तो अमरीका इसराइल खत्े के कुछ मुल्कन के जंग में दिखो है। अमरीका खत्े की दौलत से कंट्रोल बरकरार रखने लाय मुस्लिम मुल्कन के विढ़ाए रो है। यमन में थीन्दड़ शहीन से ईरान जो को भी तालुक ना है। ईरान तकरार के हल लाय मदद देने लाय तैयार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के 70 दिन वाली जंग बंदी की तजवीज रद्द कर छी। रिपोर्ट में चूंडन बाद बीहर ईरान ते हमलो करे सके तो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक भेरो बीहर अपना अर्मुस के ट्रंप स्ट्रीट जो नालो दई छो। तस्वीर बीहर समाजी वेबसाइट ते जारी कर छी। सत्तर शर्त पूरा थियण ताई अमरीका के सजा देण जो सिलसिलो जारी रहंदो। वाशिंगटन गलती कई त विच ओवर में अमरीकी अडा निशाने ते हुंदा। पासदारन इनकलाब जे तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहबी चयो आहे त अमरीका कुछ खिलाकन लाइ भी अपना हरमुस खोलाए न सघियो आहे। अमरीका जे हथियार फिटा करण वारी ख्वाहिश पूरी न थींदी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे ताई खत्े में अमन ए तरक्की मुमकिन ना है। इलाकई सहकार के मौसर बनाने लाए गालियन का अमली कदम तरफ बढ़ो पवो। न्यूयॉर्क में तकरीब का खिताब करे नायब वजीर आजम इसहाक डार है त पाकिस्तान खत्े में गेट वे जो किरदार अदा करने लाय तैयार है। आलमी अमन लाय भी पुरजम है। पाकिस्तान तकरारन के हल लाय सालसी जो किरदार अदा करे वक्कार बुलंद कयो। पाकिस्तान सऊदी अरब से गड बीठल रहो। पाकिस्तान ए कतर खत्े में अमल लाय अया भी किरदार अदा कर रहा है। दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चयो है त पाकिस्तान अफगानियन की 40 साल तई मेहमान नवाजी कई।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

ओके जी जनाब, तो हम लोग बात कर रहे थे इस सॉन्ग की। तो जी बिल्कुल, आगे चलते सॉन्ग को थोड़ा प्ले करूंगी और जो आज का टॉपिक है उस पर भी बात करेंगे। आज का टॉपिक ऐसा है, हाँ तो जी आप लोग प्रोग्राम में शामिल कैसे होंगे? आप लोगों ने या तो आप मुझे हमारे एफबी पेज पर लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम लाइव चल रहा है आवाज का रिश्ता GFM88 के पेज पर, वहाँ आप कमेंट करके शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें 8881 पर मैसेज कर सकते हैं। और सिंपल है भाई, सखर वाले तो लाजमी आए, सखर वालों की तो शहर से बात करें, सखर से ही तो है लाइव। तो जी बिल्कुल, सखर आपने लिखना है SKR अपना मैसेज और उसके बाद आपने सेंड कर देना है 8881 पर, क्योंकि 8881 के जो मैसेजेस होते हैं वो पहले ही पैनल वाले शामिल कर देते हैं। प्रोग्राम में मेरी नजर सबसे ज्यादा वहीं पर होती है, इसलिए कह दूँ कि भाई वहीं पर मैसेज किया गया ताकि जल्दी जल्दी आप लोग के मैसेजेस शामिल

मतलब कि बर्थडे विश करना है या किसी बात और उन्हें कोई सॉन्ग या कोई पोएट्री उन्हें डेडिकेट करवानी तो वो आप लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं उनके नाम के साथ, अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो जी बिल्कुल, पहले तो हम एक अच्छे से ट्रैक की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। लेकिन फिलहाल हम एक बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पर भी, कि आज का टॉपिक ही हमारा कुछ ऐसा है, और देखें टाइम का पता नहीं चलता कहाँ 5 बजे थे और कहाँ अब 5:20 PM हो चुके हैं, मतलब 5:20 हो चुके हैं।

जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा ना कि मौसम बदलते मौसम के साथ इंसान बदलता है, कहीं कहीं कभी कभी उसकी सोचें बदल जाती हैं, तो खुद को भी बदलें। तो कभी कभी खुद को भी खिजा का मौसम बना लिया करें, कभी कभी खुद को भी खिजा का मौसम बना लिया करें, और अपने अंदर से हर इस चीज को झड़ने दें जो आपको तकलीफ देती है। तो जी बिल्कुल, आज की आवाज के रिश्ते में मेरा सबसे यही सवाल है कि आप इस जाते हुए सितंबर के साथ बदलते मौसम के साथ अपनी कौन सी तकलीफ और उदासी से जान छुड़ाना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, तो जरूर मुझे बताएं। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका मैं बता चुकी हूँ, और अब मैं शामिल करने जा रही हूँ एक अच्छा सा सॉन्ग, अच्छा सा ट्रैक, एक खूबसूरत सी आवाज, नाजिया हसन की खूबसूरत सी आवाज शामिल करने

आगे जो लिसनर्स आप लोग सुन रहे थे आवाज के रिश्ते में नाज़िया हसन की खूबसूरत सी आवाज जो मैंने शामिल की थी आप लोगों के लिए, एक अच्छा ट्रैक था, दिल की लगी कुछ और भी। माना कि वो आज इस दुनिया में नहीं हम लोगों के साथ ही, लेकिन उनके गाए हुए गाने आज भी उनके मदाओं को याद, उनके मदाओं सुनना पसंद करती हूं, जैसे मैं उनको सुनती हूँ। उनके कुछ गाने मुझे बड़े पसंद हैं तो मैं जरूर अपने शो में शामिल करती हूँ। इसी तरीके से अगर कोई आप लोग भी अपनी पसंद का सुनना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं प्ले कर दूंगी। अच्छा जी जनाब, तो हम लोग सॉन्ग प्ले करने से पहले मतलब मैं एक बात कर रही थी कि अपने अंदर से उन चीजों को, उन तकलीफों को निकाल दें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं, तंग करती हैं, तो वो निकाल कर फेंक दें। ओके जी जनाब, तो हमारे पास फरमाइशें आना शुरू हो चुकी हैं और मैंने रीड भी कर ली है और मैं बहुत जल्द प्रोग्राम में वो भी शामिल करूंगी। मतलब आज जो मैं सॉन्ग सिलेक्ट कर कहते वो मुझे प्ले नहीं करने, आज मैंने सारी फरमाइशें पूरी करनी है। और क्योंकि अब एक और छोटी सी माजरत आप लोगों से करनी पड़ेगी भाई, अब हमें भी जाना है, सितंबर तो जाने ही वाला है, कुछ ही दिन रह गए, अक्टूबर आने वाला है, दरवाजे पे खड़ा, उसको वेलकम खुशी खुशी कीजिएगा। और जो है क्या नाम है, अभी फिलहाल हमें एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक है, आप लोगों को पता है छोटा सा ही मैं लेती हूँ लेकिन वो बड़ा हो जाता है। तो जी बिल्कुल टाइम है शॉर्ट और मुझे लेना है ब्रेक, ब्रेक के बाद में आप लोगों के साथ आवाज का रिश्ता कंटिन्यू करूंगी। ये रिश्ता जो आपका हमारे साथ है और पूरे पूरे 7 बजे तक ये रिश्ता बरकरार रहने वाला है। हर सैटरडे संडे को मैं आपके साथ होती हूँ, तो जल्दी से आप लोग भी आ जाओ, साथ में अपनी चाय भी लेकर आइएगा, चाहे आप लोग पीजिएगा, एंजॉय हम करेंगे। चलिए जी, तो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।

0: It's 5:30 PM. This sound check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स.
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज. उतरदा रहो.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज.
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: हक सच जो गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधंदा रहो उधंदा रहो
1: नई पहचान
2: जीए सखर
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: जीए FM नेटवर्क
1: सिंध की आवाज
0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधंदा रहो उधंदा रहो
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: जीए FM नेटवर्क
1: सिंध की आवाज

0: जो सबब थी सके थी यानी ब्लड प्रेशर वधण जो
1: जी साईं मुझे
0: अक्सर यो डठो वे आए त जके मुसलसल
2: जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

ओके जी जनाब, हम लोग एक ट्रैक सुन रहे हैं। आप लोग ब्रेक था, ब्रेक के बाद मैंने एक सॉन्ग प्ले किया था, माँ तो मजे में आ भी। बिल्कुल मैंने सही पढ़ा था, सिंधी थी तो मुझे भी आती है, पढ़ लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ। सम टाइम थोड़े वर्ड मुश्किल होते हैं जो नहीं कर पाती। अच्छा जी जनाब, इस वक्त टाइम हो चुका है 5:59 PM, यानी बस अब एक मिनट रहता है 6 बजने में। मतलब एक मिनट भी क्या, मतलब लम्हे रहते हैं 6 PM हो जाएगा 6 बजे। 6 बजे मैं लूंगी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और साथ में न्यूज, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ आवाज के रिश्ते प्रोग्राम को, ठीक है ना भाई। अच्छा जी, तो बहुत सी बातें होती रहेंगी, एक घंटा ऐसे गुजरा पता भी नहीं चला आप लोगों का। बस हमारे पास 7 बजे का टाइम रहता है, और जो मुझे सॉन्ग्स कह रहे हैं मेरे लिसनर्स, तो उनसे मैं ये कहूंगी या तो सिंगर का नाम मुझे लिखकर सेंड करके बताएं आप कौन सा सॉन्ग कह रहे हैं। इस तरीके से समझ नहीं आ रहा ना कि आप कौन से सिंगर का सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं।

0: PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: पुलिस अहलकार ब कस्टम ऑफिसर ब औरतूं ऐं हिक बार बि शामिल। कुझ ज़ख़्मियुनि जी हालत गणती जोगी। शहीदनि जंग में वाद जो ख़दशो। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाइक़े में पहुची सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। गरू वज़ीर मोहसिन नकवी पारां चेक पोस्ट ते हमले जी मज़म्मत। इंसानी जाननि जे नुक़सान ते डुख जो इज़हार। मोहसिन नकवी चयो त ख़ारजी दहशतगर्दनि जूं कार्रवायूं क़ौम जे अज़म खे कमज़ोर नथियूं करे सघनि। लॉन्ग मार्च खां पोइ ॻाल्हियूं करण आहिनि त पहिरीं छो नथियूं कयूं वञनि। केपी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफ़रीदी वफ़ाक़ी हुकूमत

0: ॻाल्हियुनि जी आछ करे छॾी। पेशावर में सीनियर सहाफ़िन सां ॻाल्हाईंदे सोहेल आफ़रीदी चयो त लॉन्ग मार्च में अञा 7 ॾींहं आहिनि, पोइ बि ॻाल्हियूं ई थियणियूं आहिनि त हाणे छो नथियूं कयूं वञनि। ॻाल्हियुनि लाइ पहिरीं बि तयार हुआसीं, हाणे बि तयार आहियूं। वफ़ाकी हुकूमत असांजी एस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हि थियण न ॾेई रही आहे। मुल्क में हिकु शख़्स जी ॻाल्हि हले थी जंहिंजो नुमाइंदो मोहसिन नक़वी आहे। पीटीआई जो 27 सेप्टेम्बर वारो मार्च खोट जो जबल निकतो कुओ साबित थियो आहे। सोहेल आफ़रीदी पहिरीं इंतज़ामी सतह ते नाकाम हो, हाणे सियासी सतह ते बि फैल थियो आहे। सुत समा और वफ़ाकी वज़ीर अता तार चयो आहे त सोहेल आफ़रीदी जी पंहिंजी पार्टीअ तां रिट ख़तम थी वई आहे। पीटीआई जो दहशतगर्दनि सां बि गठजोड़ आहे, जंहिं सबबि हमलनि जी मज़म्मत बि नाहे कंदी। अख़्तियार वली ख़ान चयो त पीटीआई खे लॉन्ग मार्च खां भॼणो ई हो त ऐलान छो कयो वियो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान जी मुलाक़ात। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़। सऊदी अरब में शहरी ऐं इक़्तिसादी हंधनि ते हमलनि बाबति बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। सऊदी दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान चयो आहे त मुलाक़ात दौरान मका दिफ़ाई मुआदे तहत थियल फ़ौजी सरबराहनि जी गॾिजाणीअ जो बि जाइज़ो वरितो वियो। मका दिफ़ाई मुआदे खे अस्करी सहकार में तब्दील करण जो अज़म वरचायो वियो।
1: Must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede, or divert Pakistan's share of waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
0: भारत कंहिं बि ग़लति फ़हमीअ जो शिकार न रहे। पाकिस्तान जे हिसे जो पाणी रोकण या रुख मोड़ण वारी कंहिं बि कोशिश खे जंगी क़दम सम्झो वेंदो। गॾियल क़ौमनि जे जनरल श्री वज़ीर आज़म चयो त नदियूं क़ौमनि जी उञ उझाईंदियूं आहिनि, विरहाईंदियूं न आहिनि। सिंधु दरिया जो निज़ाम न रुगो पाकिस्तानी अवाम पर खिते लाइ ज़िंदगीअ जी ज़मानत आहे। भारत पारां सिंध तास मुआदे खे हिकु तरफ़ो मुअतल रखण वारे फ़ैसिले जो को बि कानूनी जवाज़ न आहे। कश्मीर पाकिस्तान जी शरग आहे ऐं रहंदो। कश्मीरनि जी सियासी ऐं सफारती हिमायत जारी रखी वेंदी। पाकिस्तान, सऊदी ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआदो बि कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ न पर खिते जे अमुन लाइ आहे। अमरीका ऐं इसराइल ईरान खे कमज़ोर करण में नाकाम विया आहिनि। मुस्लिम मुल्कनि खे विढ़ायो पियो वञे। ईरानी क़ौम अमरीकी ऐं इसराइली साज़िश ख़िलाफ़ ॼमी बीठल आहे। अल जज़ीरा खे ॾिनल इंटरव्यू में ईरानी सदर मसूद पशिकियान चयो त अमरीका ऐं इसराइल खिते जे कुझु मुल्कनि खे जंग में धिकियो आहे। अमरीका खिते जी दौलत ते कंट्रोल बरक़रार रखण लाइ मुस्लिम मुल्कनि खे विढ़ाए रहियो आहे। यमन में थींदड़ शयुनि सां ईरान जो को बि तालुक न आहे। ईरान तकरार जे हल लाइ मदद ॾियण लाइ तयार आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान जे 7 ॾींहनि वारी जंगबंदीअ जी तजवीज़ रद्द करे छॾी। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जे दावा रिपोर्ट में चयो वियो आहे त डोनाल्ड ट्रम्प खे पक आहे त तहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो। नवम्बर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघिजे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प हिकु भेरो ॿीहर आबना हुरमस खे ट्रम्प स्ट्रीट जो नालो ॾेई छॾियो। तस्वीर ॿीहर समाजी वेबसाइट ते जारी करे छॾी। पाकिस्तान अफ़गाननि जे 40 सालनि ताईं महिमान नवाज़ी कई, हाणे महिमान नवाज़ीअ जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजे सरज़मीन ते अफ़गाननि खे पनाह ॾेई ग़लती कई। अफ़गाननि खे पंहिंजे सरज़मीन ॾेई ग़लती कई, पीटीआई ते एतमाद करण जी गुंजाइश नाहे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज,
1: क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा
0: जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

अगर जी जनाब आवाज के रिश्ते में आप लोग सुन रहे थे शमन वराली की आवाज, उसके बाद अब कंटिन्यू करते हैं आवाज के रिश्ते में और कुछ कमेंट्स हैं वो शामिल करते हैं, अपने लिसनर्स को भी सुनने वाले चाहने वालों को भी शामिल करना जो इतना टाइम निकाल के हमारे लिए आते हैं। साथ साथ मैंने इसी ब्रेक में चाय भी पी ली और यकीन करते हैं कि आप लोगों ने भी चाय इंजॉय की होगी, रखी होगी अपने साथ ही। अच्छा जी, हमें हमारे लिसनर कहते हैं कि फौजिया सुमरों का सॉन्ग प्ले कर दें, तो जी बिल्कुल मैं सॉन्ग तो प्ले कर दूं पर आप मुझे सॉन्ग बता दिया करें, अब मैं अपनी मर्जी से कर दूंगी, वो आपको पसंद नहीं आया तो आप मुझे प्लीज सॉन्ग के नाम लिखकर सेंड किया करें। इसके साथ ही हमारे साथ हैं हमारे पहले भी लिसनर्स हैं, मुझे मेरे लिसनर्स याद रहते हैं, तो जी बिल्कुल ये हुबदार अली शेख हैं।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।

उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये पसंद आएगा। जी बिल्कुल, मेरा पिया घर आया, मैं प्ले कर चुकी हूँ अपने तमाम लिसनर्स के नाम और आवाज के रिश्ते में एक आवाज शामिल कर दी है। कोक स्टूडियो प्रेजेंट सीजन 11 है पिया घर आया। तो भाई जिसका पिया घर नहीं आया वो आ जाए और जिनके आ गए उनका मुबारक हो उनके लिए। चले जी, तो जाते जाते आती सर्दियां हैं और जाती गर्मियां हैं, मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ठंडे पानी से एहतियात करना, ठंडी गर्म चीजों से भी एहतियात करनी है क्योंकि ये मौसम फिर बीमार करने वाला है। तो जी और टेक केयर, बहुत बहुत ख्याल रखना अपना। अपनी आरजे कोमल को इजाजत दीजिएगा, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी शाम 5 बजे से 6 बजे तक किसी न्यू टॉपिक के साथ। कोई नया टॉपिक, कोई नई बात, कोई सवाल ऐसा जो आपके हमारे साथ, अगर आप लोगों के जहन में कोई ऐसा सवाल है, आप चाहते हैं कि मैं अपने लिसनर से, अपने पब्लिक से मैं एक बात डिस्कस करूं, पूछूं, तो मेरे साथ आप लोग जरूर शेयर किया करें ताकि मैं आने वाले प्रोग्राम में उन चीजों को शामिल कर सकूं। कोई न्यू आइडियाज आप लोगों को, जिस बात को लेकर आप परेशान है वो क्लियर करनी है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा अपनी आरजे कमल खान को। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।

उस रब नु मनाना औका नहीं, तेरे रब को मना आसान है। उसके हुजूर में दो रकात नफिल पेश कर दो, वो मन जाता है।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: के डेरा इस्माइल खान में चेक पोस्ट भरसा अपघाती हमलो, 6 पुलिस अहलकारन समेत 12 जणा शहीद, 35 खां वधीक जख्मी। अपघाती बमबार बारूद सां भरियल गाॾीअ खे दराज़ा अंदा में अमन मेला चेक पोस्ट भरसा टकरायो। शहीदनि में 6 पुलिस अहलकार, 2 कस्टम ऑफिसर, 2 औरतूं ऐं 1 ॿार बि शामिल। कुझु जख़्मियुनि जी हालत गणती जोगी। शहीदनि जे अंग में वाद जो ख़दशो। सिक्योरिटी फोर्सिस इलाइक़े में पहुची सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ॿियनि पारां चेक पोस्ट ते हमले जी मज़म्मत। इंसानी जाननि जी नुक़सान ते डुख जो इज़हार। दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रखण वारे अज़म जो बि वरचाओ। लॉन्ग मार्च खां पोइ ॻाल्हियूं करण आहिनि त पहिरीं छो नथियूं कयूं वञनि। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे वॾे वज़ीर सोहेल आफ़रीदी वफ़ाक़ी हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जी आछ करे छॾी। पेशावर में सीनियर साहबनि सां ॻाल्हाईंदे सोहेल आफ़रीदी चयो त लॉन्ग मार्च में अञा 7 ॾींहं आहिनि, पोइ बि ॻाल्हियूं ई थियणियूं आहिनि त हाणे छो नथियूं कयूं वञनि। ॻाल्हियुनि लाइ पहिरीं बि तयार हुआसीं, हाणे बि तयार आहियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत असांजे एस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हि थियण न ॾेई रही आहे। मुल्क में हिकु शख़्स जी ॻाल्हि हले थी जंहिंजो नुमाइंदो मोहसिन नक़वी आहे।
2: अफरीदी तरीके इंसाफ के रखे, इन्होंने मायूस किया है अपने कारकुनान को भी, अपनी पार्टी को भी। इनके पास अब जवाब नहीं है कि ये सियासी तौर पे लीड कर सकें। और आप 5 अक्टूबर की डेट दें या 5 अक्टूबर 2028 की डेट दें, अब आपकी किसी डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बुजदिली, आपकी काबिली, आपकी सियासी नाअहली, इंतजामी नाअहली तो थी मगर आपकी सियासी नाअहली भी अब साबित हो चुकी है। और सियासी तौर पर कोई मोबिलाइजेशन नहीं है KPK के अंदर। हमने तो इसके मामले में तैयारी की कि आएंगे तो हमने अपने शहर का, अपने शहरियों का ताबू करना है, मगर ये ना है लोग जिनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा, ये अपनी सियासी साख मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। मगर सियासी तौर पे जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि सोहेल खान अफरीदी की रेट अपनी पार्टी को खत्म हो चुकी है। इतनी सियासी कमजोरी कभी भी नहीं देखने में आई थी इन 13.5 साल में, जितनी आप देखने में आई है।
1: PTI जो 27 सेप्टेम्बर वारो मार्च खोटो जबर साबित थियो आहे। सोहेल आफरीदी पहिरीं बि इंतज़ामी सतह ते नाकाम हो, हाणे सियासी सतह ते बि फेल थियो आहे। सुद समा वफ़ाक़ी वज़ीर अता ताड चयो आहे त सोहेल आफरीदी जी पंहिंजी पार्टीअ तां रिट ख़तम थी वई। PTI जो दहशतगर्दनि सां बि गठजोड़ आहे, जंहिं सबबि हमलनि जी मज़बत बि नाहे कंदी। अख़्तियार वली ख़ान चयो त PTI खे लॉन्ग मार्च खां भॼणो ई हो त ऐलान छो कयो वियो हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान जी मुलाक़ात। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़। सऊदी अरब में शहरी ऐं इक़्तिसादी हंधनि ते हमलनि बाबति बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। सऊदी दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान चयो आहे त मुलाक़ात दौरान मक्का दिफ़ाई मुआदे तहत थियल फ़ौजी सरबराहनि जी गॾिजाणी जो बि जाइज़ो वरितो वियो। मक्का दिफ़ाई मुआदे खे अस्करी सहकार में तब्दील करण जो अज़म वरचायो वियो।
3: Water must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede, or divert Pakistan

0: nation's share of the waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
1: भारत कंहिं ग़लति फ़हमीअ जो शिकार न रहे, पाकिस्तान जे हिसे जो पाणी रोकण या रुख मोड़ण वारी कंहिं बि कोशिश खे जंगी क़दम सम्झो वेंदो। गडि॒यल क़ौमनि जे जनरल असेंबली खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त नदियूं क़ौमनि जी उञ उझाईंदियूं आहिनि, विरहाईंदियूं न आहिनि। सिंधु दरिया जो निज़ाम न रुगो पाकिस्तानी अवाम पर ख़िते लाइ ज़िंदगीअ जी ज़मानत आहे। भारत पारां सिंध तास मुआदे खे हिकु तरफ़ो मुअतल रखण वारे फ़ैसिले जो को बि क़ानूनी जवाज़ न आहे। कश्मीर पाकिस्तान जी शहरग आहे ऐं रहंदो। कश्मीरनि जी सियासी ऐं सफ़ारती हिमायत जारी रखी वेंदी। पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुल्क ख़िलाफ़ न पर खिते जी अमुन लाइ आहे। अमरीका ऐं इसराइल ईरान खे कमज़ोर करण में नाकाम विया आहिनि। मुस्लिम मुल्कनि खे विढ़ायो पियो वञे। ईरानी क़ौम अमरीकी ऐं इसराइली साज़िश ख़िलाफ़ ॼमी बीठल आहे। अल जज़ीरा खे ॾिनल इंटरव्यू में ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त अमरीका ऐं इसराइल खिते जे कुझु मुल्कनि खे जंग में धिकियो। अमरीका खिते जी दौलत ते कंट्रोल बरक़रार रखण लाइ मुस्लिम मुल्कनि खे विढ़ाए रहियो आहे। यमन में थींदड़ शयुनि सां ईरान जो को बि तालुक न आहे। ईरान तकरार जे हल लाइ मदद ॾियण लाइ तयार आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान जी 7 ॾींहनि वारी जंगबंदीअ जी तजवीज़ रद्द करे छॾी। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा रिपोर्ट में चयो वियो आहे त डोनाल्ड ट्रम्प खे पक आहे त तहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो। नवम्बर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प हिकु भेरो ॿीहर आदना हुर्मस खे ट्रम्प स्ट्रेट जो नालो बि ॾेई छॾियो। तस्वीर ॿीहर समाजी वेबसाइट ते जारी करे छॾी। पाकिस्तान अफ़गाननि जी वारनि ताईं महिमान नवाज़ी कई। हाणे महिमान नवाज़ीअ जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ते अफ़गाननि खे पनाह ॾेई ग़लती कई। अफ़गाननि खे पंहिंजी सरज़मीन ॾेई ग़लती कई आहे। पीटीआई ते एतमाद करण जी गुंजाइश न आहे।

0: सिंध खां सवाइ ॿिए कंहिं बि सूबे में औरतुनि खे मुफ़्त स्कूटी न पई ॾिनी वञे। औरतुनि लाइ पिंक स्कूटी स्कीम बिलावल भुट्टो ज़रदारी शुरू कराई। मीरपुर ख़ास में मुफ़्त पिंक स्कूटीज़ विरिहाइण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील महमूद चयो त हारियुनि खे हारी कार्ड ऐं पोरियतुनि खे लेबर कार्ड ॾिनो पियो वञे। सूबे में 50,000 औरतूं ड्राइविंग लाइसेंस लाइ अप्लाई कयो। जेकॾहिं पिंक स्कूटीज़ मर्द हलाईंदो त स्कूटी ज़ब्त कई वेंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम ए डीह हर छंछर खां खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे खां शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, उधंदा रहो।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
5: GAFM नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।
7: It's 7 PM. This time check is brought to you by
8: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: पूरे सखर डिवीजन
1: अच्छा कें भी जो अगर प्रोग्राम में न अचो असों तो रॉयल लॉ कॉलेज हो तो अस उतें तट अची वासी इन बहाने असं पैं व्यूवर्स के रॉयल लॉ कॉलेज भी देखारदी उतं जहाँ क्लासरूम्स खलील साहब से उन्होंने मिलाईंदी स्पेशली जहांगीर साहब से मिलाईंदी कदी अस मौको दींदा
0: यो ऑनर हों के नालो खा पी खी
1: जी जी
0: चंदा कैप्टन ऑफ द शिप
1: यस
0: मिस्टर खलील अहमद मेहमान साहब इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन I have ever meet in my life.
1: Yes.
0: Una sa gad Sir Jahangir sahab. Both are tamam ma cha tarif kya. Chunki maula jab bhi farmana tarif je kiya na muh the dake je to behtar a. Chunki tarif dilin mein thindi a alhamdulillah. So tamam pyara mahnu ai Royal Law College rit ai Royal Law College backbone jeke sambhale vetan plus una sa gad je ki faculty asa ke mili a gad including me tahan je program mein tamam sutha teachers bhi achi chukan
1: ji ha
0: je mein maam nalo bhi ghanum kuch sir mustafa sahab
1: bilal
0: sahab bhi achi
1: sir amjay sahab
0: sir amjay sahab bhi aaya unke alawa bhi faculty member bhi
1: hain acha inshallah inhen ki mauka dinda si hai hopefully jamal sahab
0: puri college ke ek tamam behtareen tareeke sa sambhale vetan halaye vetan
1: sponsorship khalil sahab sa je kya discussion hale den sa unhen je college ke jeko
0: इंतजार कदम अचो पूरी फैकल्टी के इतने घुरा इंक्लूडिंग सर खलील साहब जहांगीर साहब जो पेंे कॉलेज के बारे में तक बेहतर का बेहतरीन बुधाए
1: यस इंशाल्लाह ताला सो बिल्कुल व्यूअर्स रॉयल लॉ कॉलेज सखर बल्कि रोड़ी में है पूरी सखर डिवीजन में तुठो जो उतने तक लॉ के बारे में बल्कि लॉ में एडमिशन तक घुर्जे LLB में तो तुम उत इन मुतलिक फर्दर अस प्रोग्राम में बुधाई रही नेक्स्ट प्रोग्राम्स में आफ्टर द स्पॉन्सरशिप सो टॉपिक ते असा अचूं पिया सो असो अज टॉपिक आए सर फैमिली लॉज इन पाकिस्तान खुला डाइवोर्स एज वेल एज फैमिली राइट्स सर सब का पैर तो मैरिज लाइफ का बाद में बेसिक राइट्स कड़ा हस्बैंड जा एज वेल एज वाइफ जा
0: बाबर फैमिली लॉज पाकिस्तान में बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट लॉज माना अस ये चंदो मुस्लिम मैरिज एक्ट 1969 1965 1964 1961 ये कलेक्टिव मिलाए करे जो ना फैमिली लॉज जैमें असा हिंदू मैरिज एक्ट भी अची वन क्रिश्चन मैरिज एक्ट भी अची था वन ब्राइडल गिफ्ट्स भी अची था वन डावरी आर्टिकल्स मेंटेनेंस उन सभी की कंपाइलेशन के चाहूं फैमिली लॉज इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स टाई हुए जो फैमिली कोर्ट्स चवन जहां स्पेशल जजिस हूं जो अस फैमिली जजिस चवन उनको पर्टिकुलर सिर्फ ए सिर्फ यो मेन फोकस यो हों टू डील विद दीस काइंड ऑफ इशू दैट हैज बीन क्रिएटेड ड्यूरिंग आफ्टर द मैरिज मैरिज का तलाक जो इशू थी वे तो मेंटेनेंस जो इशू थी वे तो डावरी आर्टिकल जो इशू थी वे तो ब्राइडल गिफ्ट्स जो इशू थे तो पियो सो उन इशूज से पर्टिकुलर डील करने के लिए दीज कोर्ट्स एंड दीज जजेस हैव बीन क्रिएटेड बाय द प्रोफेशनल गवर्नमेंट
1: ऑल राइट सर जी तुम गाल कई तलाक के बारे में तो बुधाई तलाक आए डाइवोर्स आए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
0: अब असंजे हर माशरे में जिमें सोसाइटी में असा रहूं था असा सभी के खबर आ तलाक छाए कुला छाए पर बेसिक नॉलेज ला जे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बुधाई हला फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कुला वह शे जी एक वाइफ सीक कंदी वठंदी हस्बैंड का थ्रू द कोर्ट के आई डोंट वॉन्ट टू लिव विथ माई हस्बैंड फर्दर मोर कुछ कंडीशन्स कुछ हालात उन में अड़ा क्रिएट थी जैसे करे जी रिलेशनशिप्स वो टॉक्सिक थी उन टॉक्सिक रिलेशन्स का बचने के लिए वुमेन गेट्स सेपरेशन थ्रू द कोर्ट फ्रॉम हर हस्बैंड तलाक डाइवोर्स भी चवंदा तलाक भी चवंदा इट इज अ बेसिकली काइंड ऑफ सोशल डिस्टेंस या सोशल सेपरेशन बाय द हस्बैंड टू कीप हिज वाइफ अवे के उन रिलेशन्स उन रिलेशन्स के वधीक अन्या जहरीलो करण का बेहतर आ तो मानू डिस्टेंस क्रिएट करे छे घरवारी के तलाक दे छे मतलब बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ सेपरेशन होते सिर्फ वुमेन थ्रू कोर्ट वठे थी इतने मुड़स के डिस्क्रिशनरी आ कि हस्बैंड के कें भी सिचुएशन में अगर दिसे तो वर्स्ट सिचुएशन आ तो पेंे घरवारी के तलाक दई सके तो
1: ठीक है सर टॉपिक ते पा अचू पा डिस्कस क्यों पा अवहां जी प्रैक्टिस आए 10 साल का वी लॉ में
0: थोड़ो मैं एड कदम इन में क्योंकि 1.5 साल थी
1: बल्कि डाइवोर्स थी वे या खुला थी वे वजूहत होंदी पुठियां
0: बाबर देयर इज मेनी काइंड ऑफ डिफरेंसिस दैट इज बींग क्रिएटेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ सिचुएशंस क्रिएट थे
1: जी मां शुरू में भी तां के चई त हस्बैंड जा ऐं वाइफ जा जेके अंदर राइट्स आहिनि अक्सर हस्बैंड वाइफ जेके आहिनि इन्हनि खां अनअवेयर हूंदा आहिनि ठीकु आहे ऐं जी तव्हां ॻाल्हि कई त इलाही माण्हुनि खे ख़बर आहे तलाक छा आहे पर काफ़ी इनखे इहो ख़बर न आहे त डिफरेंस छा आहे खुला में छा आहे डाइवोर्स में छा आहे डिफरेंस त असां चाहींदासीं अॼु जे प्रोग्राम में स्पेशली असांजा उहे व्यूवर्स फ़ाइदो वठनि ऐं बेसिक राइट्स जे बारे में ख़बर पवनि ऐं तव्हां जेको रूट कॉज़ बि असांखे ॿुधायो त डाइवोर्स जे पुठियां या खुला जे पुठियां कहिड़ो रूट कॉज़ आहे जंहिं वजह सां जेको आहे इहो रेशियो वधंदो पियो वञे
0: ॾिसो पहिरों त मां ईअं चवां त के असां नंढे हूंदे खां ॿुधंदा आहियूं त जेके रिश्ता आसमान में ठहंदा आहिनि उहे सेलिब्रेट हिते थींदा आहिनि वॾी मोहबत सां प्यार सां घोट कुंवार वरी ॿ फैमिलीज़ जो पाण में मिलण वरी हुननि जी हिकड़ी प्यार ऐं मोहबत ऑल ऑफ सडन कुझु अहिड़ा एलिमेंट्स क्रिएट थी वेंदा आहिनि जंहिंजे करे जेको आहिनि रिलेशन सोर थी वेंदा आहिनि उन रिलेशन मां मिठास ख़तम थी वेंदी आहे जॾहिं मिठास ख़तम थींदी आहे त पोइ रिलेशन सेपरेशन ते हलिया वेंदा
1: आहिनि
0: अगरि फैमिली शादी थियण खां पोइ हस्बैंड ऐं वाइफ जा हिक ॿिए जे मथां म्यूचुअल राइट्स आहिनि जंहिंजे करे ॾिसो न उनखे असां छा चयूं था बेटर हाफ औरत खे बेटर हाफ चयो वियो आहे ऐं मुड़ुस खे हुन जो निगेबान प्रोटेक्टर ऐं गार्डियन चयो वियो आहे ठीक नेचुरल गार्डियन मां बि हिकिड़ो लफ़्ज़ अचे थो पियो त माना हस्बैंड बि पंहिंजी औरत जो नेचुरल गार्डियन पंहिंजी घरवारी जो नेचुरल गार्डियन आहे हाणे औरत जा छा हक़ आहिनि पंहिंजे हस्बैंड जे मथां के उहो हुनखे सेफ्टी ॾींदो उन जो ख़्यालु रखंदो अगरि हुनजी एजुकेशन न आहे त एजुकेशन पूरी कराईंदो उनखे मेंटेनेंस ॾींदो उन जो जेतिरा बि हुनजी बेसिक नेसेसिटीज़ आहिनि जंहिंमें तव्हांजी क्लोथिंग थी वई फूड थी वियो तव्हांजी जेकी इवेंट्स थी ईद जा सेलिब्रेशन थी विया या खाधो पीतो शादी मुरादी जेके असां लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं उन्हनि जे जेकी बि चवजे त जेको बि मेंटेनेंस आहे उहो हस्बैंड जे मथां ऑब्लिगेशन आहे उनजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे टू फुलफिल देट थिंग्स ईअं ई वुमेन जी जेकी जीअं मर्द औरत जे मथो छा थो राइट्स थो रखे कि औरत जो कमु आहे त पंहिंजे मुड़ुस जे जेतिरा बि हुनजी डेली लाइफ में ख़्यालु रखणु हुननि जे ॿारनि जो ख़्यालु रखणु हुन जे घर वारनि जो ख़्यालु रखणु ऐं रिलेशन्स खे जेको आहे न बहितर खां बहितरीन करे रखणु मुड़ुस जी अगरि कुझु मिसाल सपोज़ अगरि मुड़ुस जी हालातनि ऐं कंडीशन खे ॾिसी करे हुन सां हलणु अननेसेसरी डिमांड्स न करणु ऐं एज़ पर इस्लामिक लॉज़ या एज़ पर जेकी सोसाइटी असांखे जेकी लिमिट्स ऐं कंडीशन्स ॾिनियूं आहिनि हुन ते पूरो लहणु दीज आर द राइट्स ऑफ द हस्बैंड एंड द वाइफ हिक ॿिए जे मथो जेके हुननि जा राइट्स आहिनि
1: ऑल राइट हाणे सिर्फ़ वजह थी अचूं पिया रीज़न्स थी अचूं पिया इहो तलाक या जेको आहे त खुला आहिनि डाइवोर्स इन जे पुठियां रीज़न छा हूंदो आहे
0: बाबा रीज़न घर जा हालात सपोज़ अगरि हिकिड़े मुड़ुस जी पघार 40,000 आहे ऐं वाइफ डिमांड करे थी त मूंखे ज्वेलरी बि खपे मूंखे ब्रांडेड कपिड़ा बि खपनि मुंहिंजे ॿारनि खे प्राइवेट स्कूल में बि पढ़णो आहे मूंखे गाॾी बि खपे बंगलो बि खपे देट इज़ नॉट पॉसिबल ऐं कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे त असां शादी खां अॻु में एक्सपेक्टेशन्स इलाही वधाए छॾंदा आहियूं त तव्हांजी घर न्याणी सुखी रहंदी घर अलॻि मिलंदो कमरो अलॻि मिलंदो उनखे रहणी करणी अलॻि मिलंदी ठीकु आहे ऐं हुनजी हर ज़रूरियात पूरी कंदो अगरि सपोज़ को स्टडी करणु चाहे थी फर्दर स्टडी बि कंदी माना हुनखे रोक टोक न हूंदी ऐं हुनखे हिकिड़ो बहितरीन माहौल मिलंदो पर बनिस्बत कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे सॼी कंडीशन्स डिफरेंट निकरंदी उहे शयूं बि जेको आहे न जनरेट कंदियूं अॻिते हली करे इन सिचुएशन्स खे
1: ऑल राइट ऐं सर जीअं वर्बली तलाक जीअं हूंदी आहे या हिकिड़ो प्रोसेस हूंदो आहे असां चाहींदासीं तव्हां प्रोसेस ॿुधायो असांजे व्यूवर्स खे त डाइवोर्स जो प्रोसेस छा आहे ऐं खुला जो प्रोसेस छा आहे कीअं वठी सघिजे थो
0: खुला लाइ त एतिरे क़दुरु चयो वियो आहे बाबर के अगरि औरत इहो बि चए न त मूंखे मुंहिंजे मुड़ुस जो चहिरो ई नथो वणे त शी डिज़र्व टू बी सेपरेटेड बाय हर हस्बैंड अगरि चए थी न मूंखे मुड़ुस जो माना घुमणु फिरणु करणु मूंखे मुड़ुस वणे ई नथो पियो त उहो सीक करे सघे थी पर
1: अच्छा हिन में अक्सर जेको आहे झेड़ण में त मतिलबु
0: सिंपल मां सिंपल कंडीशन कंहिंखे समुझाइण लाइ अगरि मिसाल बींगे मां टीचर आहे अगरि कंहिंखे मां समुझायां बींग एडवोकेट कोई मूंखां क्लाइंट सलाह थो वठे त साईं कुला जी सिंपल मां सिंपल जेके आहे न कंडीशन छा हुजे उहो सिंपल मां सिंपल कंडीशन बि इहा थी सघे थी आई डोंट लाइक
1: आई
0: डोंट लाइक मूंखे मुड़ुस नथो वणे त इहा ई काफ़ी आहे कंडीशन कुला ग्रांट करण जी पर कुला जी कुझु शर्तनि 8-9 कंडीशन्स आहिनि जिते अगरि पूरियूं फुलफिल थियनि थियूं पियूं जंहिंमां मां 3 या 2 या 3 मेजर्स ॿुधायां थो छॾां जेकी असांजे टाइम शॉर्ट हुजण जे करे मां ॿुधायां थो सभ खां पहिरियों के हस्बैंड जी क्रुएलिटी हस्बैंड पंहिंजी घरवारी जे मथां ज़ुल्म थो करे ठीकु आहे हुनखे अननेसेसरी मार कुट करे थो हुनखे जबरन फैमिली मेंबर में नथो वञणु ॾे शादियुनि में नथो वञणु ॾे या पंहिंजी फैमिली में इंटरेक्ट करणु नथो ॾे ज़ुल्म करणु ॿियो मुड़ुस जी इंटॉक्सिकेशन मुसलसिल ड्रंकर आ, शराब नोशी करे तो पियो, जुआ खेडे तो पियो, शराबू पिए तो पियो, घरवारी के मेंटेन करण के वजह सजो पैसो बाहर उडारे तो पियो, घर में कुछ प्रोवाइड न तो करे, उन माली हालात आ, सोशल इकोनॉमिकल जी कंडीशन आज लेडीज की वह तमाम वर्स्ट का मन थी वे वर्स्ट का वर्स्ट थी वे उन सिचुएशन में भी औरत चाहे तो कुला गिरा पी नई लाइफ क्रिएट कर सके थी, शुरू कर सके थी। उन खां अलावा ब टे कंडीशन्स बियूं भी आहिनि, या मिसिस प्रोलोंग हस्बैंड आहे त लॉ सां टॉपिक ई, अगरि प्रोलोंग अगरि हस्बैंड पंहिंजी मेरिड टेल शयूं अगरि पूरियूं नथो करे सघे, छोकि मां शो लाइव थो वञे थोरो पब्लिकली मां हुनखे सम्झण वारनि जे लाइ इशारो, अगरि मेरिटल जेकी सिचुएशन आहिनि उहो फुलफिल नथो करे पियो ऐं वुमेन मुसलसल कंप्लेन करे थी पई, उन सिचुएशन में बि औरत खे इजाज़त आहे त कुला वठी, औरत खे कंडीशन कुला फोर्स करे थो पियो कि इलिसिट रिलेशन्स क्रिएट कयो या जेका न ग़लति अन इस्लामिक वेज एडॉप्ट कयो, त उन सां छा थींदो, अगरि औरत चाहे थी, अगरि औरत चए थी त न मां पंहिंजे मज़हब खां या मां पंहिंजे अन इस्लामिक वेस खां माना अन इस्लामिक वेस ते न हलंदुमि, मां पंहिंजी हिकड़ी सुठी ज़िंदगी गुज़ारींदुमि, ऐं मुड़ुसु हुनखे फोर्स करे थो पियो त इहे शयूं तूं कर, त उन सिचुएशन में बि जेका न औरत मुड़ुस खां तलाक वठी सघे थी पई, ठीकु आहे, ऐं या मुड़ुस सत अठ साल नव साल एब्सेंट आहे, घर खां निकितल आहे, उनजी नो हाउस ई न आहिनि, कहिड़ी सिचुएशन में आहे, किथे आहे, इन सिचुएशन में बि औरत जेकी आहे न तलाक क्लेम करे सघे थी पई, ओ कुला क्लेम करे सघे थी पई, ऐं ॿियो प्रोलोंग या मुड़ुस तवील बीमारी में, इलाही तवील बीमारी में आहे, उन सिचुएशन में बि जेकी आहे न औरत क्लेम करे सघे थी, या हस्बैंड कंहिं जेल में आहे।

0: सत अठ नव साल गुजरी चुका आहिनि, ॿाहिरि निकिरण जा चांसिस ई न आहिनि, हुन सिचुएशन में बि औरत तलाक औरत कुला क्लेम करे सघे थी। बाक़ी सिंपल तलाक जो जेको आहे, सिंपल असां मेजोरिटी खे अगरि असां ॾिसूं त अहिले तशी ऐं अहिले सुनत में कॉन्सेप्ट तलाक जो डिफरेंस आहे। त अगरि असां अहिले सुनत जे कॉन्सेप्ट खे वठी करे हलूं था पिया त मेजोरिटी जेकी असांजी आहे अहिले सुनत सां बिलोंग करे थी पई, त असां वटि तव्हांखे ख़बर आहे टिनि क़िस्मनि जी तलाक थींदी आहे, तलाक एसन, तलाक एसन, तलाक बिदत आहे। ठीकु आहे, त उन में छा थींदो आहे त डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट तरीक़े सां हस्बैंड तलाक प्रोनाउंस कंदो आहे। जेकी असां वटि मोस्ट ऐं मेजर जेकी कॉमन आहे उहा तलाक बिदत आहे,
1: जे
0: माना थ्री टाइम प्रोनाउंस करे छॾणु ऐं हिकिड़ो लिखत में घरवारी खे नोटिस जे शुरू उन तलाक डीड जेके असां चवंदो या डाइवोर्स डीड जी शकल में ॾेई छॾणु, त उन में छा थींदो आहे त तव्हांखे पंहिंजे वाइफ खे नोटिस बि ॾियणो हूंदो आहे, तलाक डीड हुन खे ॾियणी हूंदी आहे, हिकिड़ो नोटिस तव्हांखे चेयरमैन यूनियन काउंसिल खे बि ॾियणो हूंदो आहे, जंहिंजे नतीजे में विद इन 90 डेज़ में एस पर असांजे जेके फैमिली लॉज़ आहिनि जंहिंमें सेक्शन 7 आहे, जो सब क्लास 3 & 5 चए थो पियो, त 90 डेज़ जो टाइम हूंदो आहे जंहिंजे अंदरि अगरि हस्बैंड या वाइफ नशे खे रिवोक करणु चाहिनि विद इन 90 डेज़ में, छोकि यूनियन काउंसिल में आर्बिट्रेशन काउंसिल ठहंदी आहे। आर्बिट्रेशन काउंसिल असां पढ़ी चुका आहियूं ऑलरेडी, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन में पढ़ी न चुका प्रोग्राम करे चुका आहियूं, छोकी हिकिड़ी हैबिट थी वई आहे, प्रोग्राम करे चुका आहियूं, त हुन जो पर्पज़ इहो हूंदो आहे त मामलात खे सुठे तरीक़े सां डील करण जे लाइ यूनियन काउंसिल में चेयरमैन छा कंदो आहे, हिकिड़ी आर्बिट्रेशन काउंसिल विहारींदो आहे ऐं कोशिशि कंदो आहे त मां हिन खे सलाह जी तरफ़ खणी वञा, अगरि सलाह नथी थिए विद इन 90 डेज़ में जेकी तलाक आहे उहा इफेक्टिव थी वेंदी, माना तलाक डिक्लेयर थी वेंदी।
1: ऑल राइट,
0: दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कुला एंड द तलाक
1: डाइवोर्स। ऑल राइट, सो बिल्कुल प्रोग्राम लीगल कॉर्नर जारी आहे, हींअर असां हलंदासीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक डां, असां सां गॾु रहिजो।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: कई बजे का शाम पंचे बजे टाइम अपॉइंटमेंट।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: पियो त हिन जो रिश्तो हिन जो रिलेशन्स त असां जेको आहे न तलाक या कुट आउट कयूं। त मुंहिंजी सजेशन इहा ई हूंदी, एडवाइस इहा ई हूंदी की पेज ते आणणु खपे। सिंपल मेथड आइडिया मीडिएशन थी सघे थी, आर्बिट्रेशन थी सघे थी, नेगोशिएशन थी सघे थी, रिकॉन्सिलिएशन थी सघे। दीज आर द मेजर टर्म्स दैट आर बींग यूज़ इन द आर्बिट्रेशन सिस्टम। सो मुंहिंजी सजेशन त इहा आहे त हर हुन फैमिली मेंबर खे पंहिंजो रोल प्ले करणु खपे जेके शादियुनि में गॾु आहिनि।
1: ओके ओके, सो लाइव कॉलर जी तरफ़ असां हलंदासीं। लेट सी लाइन ते करे 03000134888। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो बिल्कुल प्रोग्राम में कुछ सिग्नल्स इशू आहिनि, तव्हांखे मां रिक्वेस्ट कंदुसि त तव्हां अहिड़े लोकेशन ते बीह करे कॉल कयो जिते अव्हां वटि नेटवर्क जा सिग्नल्स कंप्लीट हुजनि, त जीअं अव्हांजो आवाज़ क्लियर असां ताईं पहुचे। लीगल कॉर्नर प्रोग्राम आहे जंहिंमें अव्हां लाइव कॉल जे लाइ नंबर डायल करे सघो था 03000134888। सर, खुला ऐं डाइवोर्स जे बारे में तव्हां ॿुधायो, एडीआर जे बारे में जेको आहे त फैमिली खे जेको आहे त फैमिली जे वॾनि खे जेको आहे त रोल प्ले करणु घुर्जे, त जीअं ज़रूरी आहे। सर, मेंटेनेंस ते हाणे असां अचूं पिया, उहा कीअं जेकी आहे त मेंटेन करे सघिजे थी हस्बैंड पारां?
0: मेंटेनेंस बाबति अगरि बेसिकली पंहिंजे मुड़ुस जे मथां कयो ॾिए थी, मेंटेन माना मेंटेनेंस मां मुराद सिर्फ़ पैसो न आहे।
1: जी,
0: मेंटेनेंस मां मुराद हर उहा बेसिक नेसेसिटी हस्बैंड वाइफ जी फिल करे जेकी उहा हुन जे मथां फर्ज़ आहे। मां नौकिरी बि करणु चाहियां त हस्बैंड अगरि राज़ी आहे त पंहिंजे उनखे छोकिरी खे अगरि चाहे त पंहिंजे घर वञण जी बि इजाज़त ॾे, उन जी जेकी बि बेसिक ज़रूरियात आहिनि, बेसिक नेसेसिटीज़ आहिनि, उहा मुड़ुस जे मथां फर्ज़ आहिनि, उनखे चइबो आहे मेंटेन करणु। ठीक आहे, पोइ उहा पैसे जी शकल में बि थी सघे थी ऐं फिज़िकली अगरि मर्द चाहे त औरत खे पाण बि मेंटेन करे सघे थो पियो।
1: ठीकु आहे, हाणे सर इन सिचुएशन में जेको आहे त मेंटेनेंस हस्बैंड खे ॾियणी आहे, जीअं मिसाल ॻाल्हि कई त वाइफ जेकी आहे त रुसी करे वञी सावरे वेची आहे ऐं ड्यूरेशन वधी वियो आहे, ॿ टे साल थी विया आहिनि, त छा मेंटेनेंस तॾहिं बि ॾियणी आहे?
0: मेंटेनेंस त ॾियणी आहे।
1: ओके,
0: मेंटेनेंस हस्बैंड जे मथां मैंडेटरी आहे, त अगरि औरत शादी करे आई आहे ऐं शादी आहे त हाणे उहा हुन जे मथां रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वई कि पंहिंजी मेंटेन करे। मां ॾिसो रिपीट उहा ई ॻाल्हि कई, रुसण खां रुसी वई आहे, हुनजी वाइफ आहे, अगरि हुनखे मेंटेन कंदो। ॾिसो न हाणे रुसण जा रीज़न्स छा हूंदा,
1: रुसण जा रीज़न तव्हां अहिड़ा केसिस ॾिठा आहिनि, मूं बि ॾिठा आहिनि त रुसण खां बाद में जेको आहे न वाइफ पारां जेको आहे न तमामु घणियूं डिमांड्स कढी वेंदियूं आहिनि। स्पेशली तव्हां ॾिठो हूंदो त सेपरेशन घर जेको आहे त अलॻि था वठो ऐं हस्बैंड जेको आहे न अफोर्ड न करे सघंदो आहे, त इन सिचुएशन में हस्बैंड छा करे?
0: पहिरीं ॻाल्हि त बाबा ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि त इहो त पहिरां त वॾा वॾा ख़्वाब ई न ॾेखायो तव्हां, चवंदा न बेस सुठी ॻाल्हि इहो ई आहे त मेन शुड रिमेन अटैच विथ रियलिटी। अगरि तव्हांखे ख़बर आहे त हिकिड़े माण्हू जी पघार रिश्तो वठो था, वॾा ख़्वाब न ॾेखायो त बसि असां छोकिरे जे पोयां बीठा आहियूं, नियाणी असांजी नियाणी असां संभालींदासीं, शादी खां पोइ सेज खां पोइ ख़बर पई सतावड़े खां पोइ लकुम दीन कुम वली दीन, बाबा तव्हांजो रस्तो असां सां हिननि जो रस्तो असां खपे। हिकु रियलिटी अॻु में ई ॿुधायो त मिसाल मुंहिंजो बचो आहे, मुंहिंजो पुट आहे या मुंहिंजो भाटियो आहे, मुंहिंजी भाटी आहे या मुंहिंजो भाणेजो आहे, सोर्स ऑफ इनकम आहे। अगरि तव्हांजी नियाणी हुन में कम्फर्टेबल आहे, तव्हां कम्फर्टेबल आहियो त रिश्तो ॾियो, अदरवाइज़ तव्हां अगरि पंहिंजी नियाणी जो बहितरीन खाते रिश्तो करणु चाहियो त करे छॾो। असां जेके डे ड्रीम्स ॾेखारे छॾंदा आहियूं न, ख़्वाब वॾा वॾा ॾेखारे छॾंदा आहियूं, पोइ हुन रियलिटीज़ ते जॾहिं न बीहंदा आहियूं त पोइ रिश्ता ऐं हालात ख़राब थींदा आहिनि। असांजी इस्लाम बि असांखे इजाज़त ॾिए थो, बल्कि दुनिया जो हर मज़हब इजाज़त ॾिए थो त जॾहिं बि हस्बैंड ऐं वाइफ जी शादी थी वञे त दे मस्ट रिमेन सेपरेटेड, उन्हनि खे हिकिड़ी अलॻि सेपरेट अलॻि कमरो अलॻि जॻह ॾिनी वञे त पंहिंजी हिकिड़ो लाइफ ऐं हिकिड़ो केरियर स्टार्ट करणु। ॿियो असां वटि हिकिड़ो कॉमन सेंस आहे, जीअं शादी खे ईअं लॻंदो आहे त बसि पुट असांजे हथनि मां हले वियो, ठीकु आहे, छोकिरी जे ॿारनि खे ईअं लॻंदो आहे त असांजी नियाणी असां वटि ईंदी न। अगरि हस्बैंड बाय चांस अगरि पंहिंजी घरवारी खे कुझु स्पेसिफिक टाइम लाइ रोके थो पियो या कुझु फैमिली मेंबर्स खे रेस्ट्रिक्ट करे थो पियो, भाउ मुंहिंजे घर में इन जो अचणु वञणु बंदि थिए, त औरत जे मथां बि आहे त उहा हुनजी उन सिचुएशन खे समझे, अगरि पंहिंजी फैमिली खे पंहिंजे घर खे सुठे तरीक़े सां मेंटेन करणो आहे। हिन मक़सदु छा आहे जे मां चयुमि बेटर हाफ़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड ऐं वाइफ में जेसिताईं म्यूचुअल अंडर

0: बाबा डिपेंड करे तो कि माली हालात बिन्हिनि मां कंहिंजा सुठा आहिनि। जीअं अगरि मिसाल कुला जी कंडीशन थिए, ड्रंकर आहे, मुड़ुस अलील आहे, बीमार आहे, पेस खां रखिली ट्रेट आहे, या हुनजी उहा मेंटल स्टेप कंडीशन स्टेप ॿारनि खे संभाले, उन जॻह ते औरत सपोज औरत सोशली स्ट्रांग आहे, पॉलिटिकली स्ट्रांग आहे, इकनॉमिकली स्ट्रांग आहे, मुड़ुस खां सुठो कमाए थी, सुठो सोर्स ऑफ इनकम अथसि ऐं पंहिंजे ॿारनि खां बहितरीन तालीम ॾेई सघे थी, त अगरि वाइफ चाहे त पंहिंजे ॿारनि जी कस्टडी पाण रखी सघे थी पई। इन निस्बत में अगरि और मर्द स्ट्रांग आहे पंहिंजी औरत खां ऐं औरत ॿी शादी को पेरेंट आहे जेको पीउ आहे, पंहिंजा ॿार क्लेम करे।
1: अच्छा, उहा एज केतिरी हुजणु घुरिजे ॿार जी?
0: ॾिसो न, ॿार जी हूंदी आहे फॉर द छोकिरो ऐं जेको आहे न पुट जे लाइ, जंहिंमें जेको आहे न पीउ पंहिंजे ॿारनि जी कस्टडी क्लेम करे सघे थो।
1: ओके, ऐं अगरि हिन खां घटि एज में आहे फॉर एग्जाम्पल,
0: हाली हुनजी औरत जी, हाली हुनजी माउ जे हुन में ई रहंदा, पैटर्न में ई रहंदा, पैटर्नेज जेके चवजे, सरकारी सोशल त न, अगरि चाहे थी अगरि सेपरेट अंडर सेक्शन 24 ऐं 10 जे थ्रू पीउ पंहिंजी गार्डियनशिप ॿारनि जे लाइ हुन में इहे कंदी के सोशलिटिकली स्ट्रांग आहे ऐं सुठी स्कूलिंग ॾेई सघे थो, क्लोथिंग ॾेई सघे थो, हुनजी फीडिंग सुठी कराए सघे थो पियो, ठीकु आहे, हुनजी जेको बि मेडिक आहे उहो जेके असां मेडिसन चवंदा आहियूं हुनजी केयर सुठी करे सघे थो। काइंडली द चिल्ड्रन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द फादर, अगरि फादर वाइस वर्सा चवजे, अगरि फादर हुन कंडीशन ते न आहे द कंडीशन द कस्टडी शुड बी गिवन टू द मदर, छो कि दी बोथ आर द नेचुरल गार्डियंस।
1: ठीक आहे सर, हाणे हक में ऐं अदर फाइनेंशियल असां राइट्स थी अचूं, डावरी आर्टिकल्स थी विया या हक में थी वियो, इन जे बारे में पाकिस्तानी लॉ छा पियो चवे?
0: क्लेम करे सघनि था? मां जीअं चयुमि त
1: हिसाब सां जीअं तव्हां ॻाल्हि लिमिटेशन्स आहिनि, छा हक में कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे शादी में त ज़ोरी जेको लिखारायो वेंदो आहे, जेको हस्बैंड एग्री न हूंदो आहे, चलो उहो लिखजी वियो त उन खां बाद में जेको आहे त
0: उन खां पोइ ॾिसो न, हाणे हक में केस दाख़िल थो थिए डावरी आर्टिकल जो या हक में जो केस दाख़िल थो थिए पियो, त अगरि क्लेम करे थी छोकिरी, क्लेम करे थी मुंहिंजो डावरी आर्टिकल्स एतिरो हुयो, मुंहिंजो सोन एतिरो हुयो, देन दे मस्ट प्रोड्यूस द एविडेंस,
1: एविडेंस
0: उहो किथे थींदा? फैमिली कोर्ट में उहो लिस्टूं ॾींदा, रसीदूं ॾींदा, ऐं जेको उहो क्लेम करनि था पिया जंहिंमें निकाहनामो आहे, ओरिजिनल निकाहनामो ॾियणो पवंदो, इन्हनि सभिनि खे अॻियां रखी करे देन इट विल बी डिसाइडेड दैट द क्लेम दैट इज मेक्ड बाय द ब्राइडल या ब्राइड जेको क्लेम कयो आहे, छोकिरी जेको कुंवार क्लेम करे थी, कुंवार न चवजे छोकिरी चवजे, अगरि उहो क्लेम करे थी त मुंहिंजो डावरी आर्टिकल्स एतिरो हुते पिया आहिनि, त सभ खां पहिरियों जेको आहे न शी हैज़ टू प्रूव दैट थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, उन खां पोइ जज डिसाइड कंदो, जॾहिं हुनजी एविडेंस ईंदी जज डिसाइड कंदो आर्टिकल्स ते अवेलेबल आहे या न आहे। उन जे विच में हिकड़ी असां कोर्ट में त रिटर्न ऑफ डावरी आर्टिकल जी जेकी हिकिड़ो टेम्पररी ऑर्डर थींदो आहे कि इन विच में जेतिरो बि अगरि सामान पियो आहे त हुन में असां जेको आहे न बेलफ जेके असां नाज़िर चवंदा आहियूं उहो अपॉइंट थींदो आहे, कमिश्नर अपॉइंट थींदो आहे कि जेतिरो बि डावरी आर्टिकल्स जेको पियो आहे हुते एट प्रेज़ेंट उहो खणाए वठो, उन खां अलावा अगरि जेको नाहे अवेलेबल या यूज़ थी वियो आहे या शो नथा करनि पिया, उन ते पोइ सॼी हिकड़ी एविडेंस लीड थींदी आहे कि सर मैडम असांखे हेतिरो सामान मिलियो आहे ऐं हे सामान हिन असांजो लिखायो आहे। अमूमन छा थींदो आहे डावरी आर्टिकल्स में मेजर जेको सामान हूंदो आहे वॾो उहो मिली वेंदो आहे।
1: जी जी,
0: उन में नंढो नंढो मिसल क्लोथिंग थी वई, ॿिया सामान थी विया या को अहिड़ो क्रोकरी जेके चवजे, सामान असांखे मिली वेंदो आहे, गेरा मिली वेंदियूं आहिनि, सामान न मिलंदो आहे। ऐं इन खां वधीक जेको मेजर सामान हूंदो आहे उहो हूंदो आहे गोल्ड,
1: गोल्ड जी,
0: ठीकु आहे न, त एस्पेक्टेशन जेको हुते हलंदो आहे, जेको मेन कंटेस जेके चवजे, उहो जेको मेन द बोन ऑफ कंटेंशन हूंदी आहे उहो हूंदो आहे। उहो ऑर्नामेंट डिसाइड करण में थोरो टाइम लॻी वेंदो, जंहिंमें तव्हांजी रसीदूं लाज़मी आहिनि, मैंडेटरी आहिनि, जेकी शो करनि त वाकई गोल्ड हस्बैंड ॾिनो आहे ऐं दे डज़ नॉट बिलोंग टू द ब्राइड या कुंवार या जेकी छोकिरी आहे जेकी तलाक या कुला वठणु चाहे थी, उनजो उन सां तालुक नथी रखे पई।
1: ऑल राइट सर, ही त असां हिन ते तकरीबन असांजो तकरीबन जेको आहे कवर थी वियो आहे, डावरी आर्टिकल ते असां अची वियासीं, हक मेयर ते अची वियासीं। इन खां अलावा जेको आहे त मिसकनसेप्शन्स आहिनि असांजी सोसाइटी में, स्पेशली खुला वठण लाइ जेका त हस्बैंड जी परमिशन लाज़मी आहे, इन मिसकनसेप्शन खे कीअं पिया ॾिसो?
0: खुला वठण जो पहिरीं ॻाल्हि त केरु चाहींदो त मुंहिंजी घरवारी मूंखां खुला वठे, पर अगरि हालात ऐं कंडीशन
1: सर अहिड़ा केसिस
0: पर परमिशन ॾिसो न, अगरि म्यूचुअल परमिशन आहे
1: ऐं फोर्स कयो वेंदो आहे त खुला वरिती वञे स्टेट ऑफ डाइवोर्स, त
0: मुड़ुस कॾहिं बि, हा पहिरीं ॻाल्हि त अगरि सपोज औरत खुला वठे थी त असां वटि मेजोरिटी 90% केसिस इहे हूंदा आहिनि त अगरि औरत खुला वठंदी आहे त हस्बैंड सिर्फ़ प्री ट्रायल असां हुनखे चवंदा आहियूं, कोर्ट में हिकिड़ो प्री ट्रायल थींदो आहे। वुमेन आई आहे क्लेम करे थी शी वॉन्ट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम, उहो क्लेम करे थी जज साहिब केस करे थी, सर आई डोंट वॉन्ट टू लिव विथ हिम, उन जे थ्रू जय साहब छा कंदा आहिनि हिकिड़ो प्री ट्रायल जेको आहे न अरेंज

0: कंदा आहिनि, जंहिंजो सोल पर्पज़ इहो हूंदो आहे कि वॉट आर द डिफरेंसिस दैट हैज़ बिन क्रिएटिड बिटवीन द बोथ पार्टीज़, कि आख़िर वजह छा आहे कि लेडीज़ ऐं जेको आहे न हस्बैंड, लेडीज़ ऐं जेको आहे न हस्बैंड जे चइजे कि मुड़ुसु ऐं घरवारी पाण में तलाक वठण जा रीज़न्स छा आहिनि. उहो हिकिड़ो स्पेसिफिक कलाक, ॾेढ कलाक जंहिंमें जज एज़ अ जज न वेठो हूंदो आहे, बल्कि फैमिली मेंबर वांगुरु, हिकिड़ी सरपरस्त वांगुरु, हिकिड़ो पेट्रोनेज वांगुरु, अगरि मां हिनखे चवां त हिकिड़ी आर्बिट्रेटेड या आर्बिट्रेशन काउंसिल वांगुरु इज़ अ हिकिड़ो रिप्रेज़ेंट कंदो आहे पाण खे, उन्हनि खां रीज़न्स पुछंदो आहे, वजूहात पुछंदो आहे, उनखे एतिरे क़दुर सेटिस्फाई कंदो आहे कि बाबा विद इन वॉल, जीअं हाणे असां पॉडकास्ट में वेठा आहियूं, जीअं वॉल आहे पूरी कमरो बंदि लॻो पियो आहे, त जीअं उन विद इन वॉल में जज साहिबु या जज लेडी हुजे या मेल हुजे, उहो पूरो स्पेसिफिक टाइम ॾींदा आहिनि. पहिरियों हस्बैंड खे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾींदा आहिनि, अगरि कुल आहे त पहिरियों वाइफ खे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾींदा, उन खां पूरी वजूहात पुछंदा, वरी उन जे रिप्यूटल में हस्बैंड खां साॻे ई सवाल कंदा त तव्हां हिन जे सवाल जा जवाब ॾियो. उन सां छा थींदो आहे, जज जो माइंड क्लियर थी वेंदो आहे कि अगरि औरत तलाक कुला वठणु चाहे थी त हुन जा बेसिक जेके पर्पज़ हुयो उहो इहो हुयो तलाक वठण जो. हस्बैंड खे चवंदा त तूं इन शयुनि ते छो न लथे, अगरि उन ई टाइम प्री ट्रायल जे टाइम अगरि हस्बैंड रिग्रेट करे थो, ग़लतियूं तस्लीम करे थो, चए थो ॿीहर मां पंहिंजी घरवारी खे नाराज़ न कंदुमि, भले चाहे तव्हां मूंखां लिखत में थिए वठी छॾो, इनशाला मुंहिंजी घरवारी ॿीहर हिन कोर्ट में न ईंदी, मां हिन जी हर जाइज़ डिमांड पूरी करण लाइ तयारु आहियां, त मेजोरिटी ऑफ केसिस में छा थींदो, असांजा केसिस प्री ट्रायल में ई सोल्व थी वेंदा आहिनि. हार्डली केसिस ईअं हूंदा आहिनि जेके कुला ग्रांट थी वेंदी आहिनि, दे मूव सेपरेट, दे मूव फ्रॉम वन एन अदर, दे पार्ट देयर वेस, हिकड़े रस्ते ते छोकिरो ॿिए रस्ते ते, ठीकु आहे, उन कंडीशन में असां प्री ट्रायल में असां ज्यादातर केसिस सोल्व थी वेंदा.
1: ओके, अच्छा सर, खुला खां बाद में जेको आहे कुझु ॿिया बि राइट्स आहिनि औरत जा हस्बैंड ते?
0: खुला खां पोइ मेंटेनेंस आहे, खुला खां पोइ तव्हां औरत मेंटेन क्लेम करे सघे थी. पहिरियों त इद्दत पीरियड में हली वेंदी, उहा इद्दत पीरियड पूरो कंदी त इद्दत पीरियड जेको उहा क्लेम कंदी. अगरि कुला सां गॾु ई हुननि मेंटेनेंस जो केस दाख़िल कयो आहे त पास्ट प्रेज़ेंट फ्यूचर मेंटेनेंस बि वठी सघे थी पई, पर जॾहिं कुला ग्रांट थी वञे त पोइ इद्दत पीरियड जी जेकी मेंटेनेंस आहे उहा हुनजे मथो, हस्बैंड जे मथो जेको आहे न ऑब्लीगेटरी थी वञे, ऐं हुन खां पोइ जेको हक़ आहे उहो हक़ महर औरत जेको आहे न डिक्लाइन कंदी, कुला वठे थी त डिक्लाइन कंदी, जेको हस्बैंड जो आहे उहो हुनखे वापसि कंदी. अगरि हुन हक़ महर में सोन बि आहे, अगरि हुन हस्बैंड सोन ॾिनो आहे त उहो औरत खे ॾियणो आहे, एज़ पर शरिया बि हुनखे ॾियणो आहे. ऐं रहियो डावरी आर्टिकल्स जो, त डावरी आर्टिकल जीअं कुला ऐं इद्दत पीरियड पूरो थींदो त हो डावरी आर्टिकल्स उहो क्लेम करे सघे थी, ऐं पंहिंजो इद्दत पीरियड जो मेंटेनेंस उहा बि क्लेम करे सघे थी पई फ्रॉम द हस्बैंड.
1: ऑल राइट, सो सर, प्रोग्राम जो वक़्तु बि तक़रीबन पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचण वारो आहे. लास्ट में तव्हां असांजे लिसनर्स खे, स्पेशली जेके असांखे ॿुधनि पिया, हस्बैंड वाइफ़्स, स्पेशली वाइफ़्स जेके आहिनि त मामूली ॻाल्हियुनि ते जॾहिं रुसी वञनि थियूं, या हस्बैंड जेके आहिनि परेशान लॻा पिया आहिनि, या राइट्स हिक ॿिए जा वायोलेट कनि पिया, अनअवेयर आहिनि, हुननि खे तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा त जीअं हू डाइवोर्स या अहिड़े खुला जी तरफ़ वञण खां पहिरां इहे जेके नॉर्मल ऐं नंढा नंढा मसला आहिनि उहे पाण ई जेके आहिनि त हल करे वठनि?
0: मुंहिंजी हिकड़ी सलाह इहा ई हूंदी बाबर सभिनि खे ॿुधण वारे, जेसि ताईं मुंहिंजी आवाज़ वञे थी, मां जेकी मूंखे अलाए इल्मु ॾिनो आहे उन हिसाब सां मां ॻाल्हाईंदुमि, कि अगरि तव्हांजो डिसीशन अची चुको आहे तलाक ते या डिसीशन अची चुको आहे कुला ते, त काइंडली ॿारनि खे सिर्फ़ ॾिसी वठनि हिकु दफ़ो, त जेके साम्हूं मासूम ॿार घुमनि था खां वधीक पेरेंट्स जे दौरान उहो ॿार थींदा. इन जे करे सभिनि खां वधीक नापसंदीदा अमल जेको आहे न अलाह खे पसंदि आहे उहो तलाक आहे, ठीकु आहे, उन सां ॿियो कुझु न थींदो, ॿ फैमिलीज़ पाण में अलॻि थी वेंदियूं. हाणे तव्हां अंदाज़ो लायो, तव्हां बि इन माशरे में रहो, मेहंदी खां वठी करे, ओ मेहंदी थो चवां पंहिंजो नालो छा आहे, पोती जेके असां चवंदा आहियूं, रसम खां वठी करे मंगणी खां वठी करे, इतो खां वठी करे वेंदे सतावड़े ताईं केॾो कमाल जो मंज़र हूंदो आहे, जंहिंमें असां शादियुनि में, जंहिंमें असांजी ईदूं बि ईंदियूं आहिनि, जंहिंमें असांजा इवेंट्स बि ईंदा आहिनि, केॾे शौक़ सां, केॾी मोहबत सां सामान खणी वेंदा आहियूं, सेलिब्रेट कंदा आहियूं, या फैमिली मेंबर्स में अगरि जनरली बि गैदरिंग थी वेंदी आहे त हुन कपिल्स ते केॾो डिस्कशन कंदा आहियूं, तव्हांजी शादी वग़ैरह, शादी जा इवेंट्स हूंदा आहिनि, केॾो बहितरीन तरीक़े सां पूरी ॿ ॿ फैमिलीज़, जेकी ॾह ॾह फैमिलीज़ आहिनि, पूरो सेलिब्रेट कंदियूं आहिनि. सेलिब्रेट उहा जेकी ख़ुशी आहे उहा सिर्फ़ नंढड़ी तल्क कलामी ते, उहो सॼो जो सॼो जेको रिलेशन आहे सॼो सॼो ख़राबु थो थिए. मां नथो चवां त मेजोरिटी ऑफ केसिस में ईअं थींदो, मेजोरिटी ऑफ केसिस में रिलेशन्स इलाही जॾहिं ख़राब थी वेंदा आहिनि तॾहिं वञी हालात तलाक ऐं कुला ते पुॼंदा आहिनि. अगरि नॉर्मल सिचुएशन आहे, कंट्रोलेबल आहे, कंट्रोल करे सघिजे थी, त मां चवंदुसि फैमिली पंहिंजो रोल प्ले करनि, ऐं हिन खां बहितर आहे त पंहिंजे बचनि खे ज़रूरु हिकु दफ़ो ॾिसनि, कॾहिं बि ज़हन में अगरि हुनखे इहा अचे या अहिड़ो को मूवमेंट क्रिएट थिए त मां पंहिंजी घरवारी खे तलाक थो ॾियां या

0: वाइफ चए त मां पंहिंजे मुड़ुस खां कुलाह थी वठां, दे नीड टू सी देयर चिल्ड्रन्स। बसि अलाह करे, मुंहिंजी इहा ई दुआ आहे सभिनि सां, अलाह सभिनि जे घर में हिफ़्ज़ ऐं अमान रखे, हस्बैंड ऐं वाइफ जेके बि जिते बि आहिनि अलाह जे पनाह में हुजनि, ठीकु आहे, ऐं हुननि जा बच्चा हुननि सां गॾु ई अटैच हुजनि, पंहिंजी सुठी ज़िंदगी, पंहिंजी सुठी लाइफ स्टैंडर्ड गुज़ारन। मुंहिंजी दुआ इहा ई आहे, मुंहिंजी एडवाइस बि इहा ई आहे।
1: सो बिल्कुल व्यूअर्स, प्रोग्राम जे वक़्त बि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ऐं तव्हांखे प्रोग्राम जे हवाले सां को फीडबैक ॾियणो हुजे त तव्हां असांजे व्हाट्सएप नंबर ते ॾींदव। असांजो नंबर आहे 03000113488। फीडबैक तां ॻाल्हि यादि आई त माज़रत खां आहियां, तव्हांजी कॉल्स प्रोग्राम इंक्लूड न करे सघियासीं, छाकाणि त नेटवर्क जो इशू अचे पियो, इन खे मां रिज़ोल्व करण जी कोशिशि कंदुसि। अगले प्रोग्राम में वरी नए टॉपिक सां गॾु अव्हां सां मुलाक़ात थींदी। तेसीं ताईं अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर।

0: छा तव्हां जो ख्वाब आहे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: It's 8 PM. This project is brought to you by
5: D Skin Beauty Cream, असली ग्लो हर नीह जोशो, a product by Biocon International Pakistan।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हमले जी मुसम्मत इंसानी जान के नुकसान से दुख जो इजहार दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी रखने वाले अजम जो वर्जाओ

0: the beginning, Pakistan didn't teach them that.
1: Don't go back like this over there. Otherwise, they will.
2: पाकिस्तान अफ़ग़ानियन जे 40 सालनि ताईं महिमान नवाज़ी कई. हाणे महिमान नवाज़ी जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे. दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ते अफ़ग़ानियन खे पनाह ॾेई ग़लती कई. अफ़ग़ानियन खे पंहिंजी सरज़मीन ॾेई ग़लती कई. पीटीआई ते एतमाद करण जी गुंजाइश नाहे. केस में नामज़द एमपीए जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस खे स्पीकर खां इजाज़त वठणी पवंदी. वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी केपी असेंबली जे लिखियल ख़त ते तनक़ीद. मोहसिन नक़वी केपी असेंबली जो लेटर जारी कंदे चयो आहे त जेकड॒हिं को एमपीए कंहिं माण्हू खे क़तल करे छॾे त छा पुलिस केस गिरफ़्तार करण खां अॻु बि स्पीकर जी इजाज़त जो इंतज़ार कंदी. कानून जी नज़र में सभिनी जे बराबर हुजण जो ही कहिड़ो मिसाल आहे. वाह अवां जारी रखो. छा हिन खे ई रियासत मदीना चयो वेंदो आहे? सिंध खां सवाइ बि कंहिं बि सूबे में औरतुनि खे मुफ़्त स्कूटी न पई ॾिनी वञे. औरतुनि लाइ पिंक स्कूटी स्कीम बिलावल भुट्टो सरकारी शुरू कराई. मिरपुर ख़ास में मुफ़्त पिंक स्कूटीस विरहाइण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर शहजील नामेमट चयो आहे त हारियुनि खे हारी कार्ड ऐं पोरियतनि खे लेबर कार्ड ॾिनो पियो वञे. सूबे में 50,000 औरतुनि ड्राइविंग लाइसेंस लाइ अप्लाई कयो आहे. जेकड॒हिं पिंक स्कूटीस मर्द हलाईंदो त स्कूटी ज़ब्त कई वेंदी. वज़ीर-ए-आज़म मुलाक़ात में पेट्रोलियम लेवी वारो मसलो हल न कयो त ॿीहर लॉन्ग मार्च कयो वेंदो. लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त एहतजाज पीटीआई जो हक़ आहे. केपी में गवर्नर राज वारियुनि अफ़वाहुनि जी मुसम्मत कयूं था. जमात इस्लामी जल्द मुख़्तलिफ़ शहरनि में जलसा बि कंदी.
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो GAFM 91.6.
5: खुशखबरी. हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे. जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे. सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि. अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि. अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो. चेकअप फीस सिर्फ़ 300 रुपया. क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे. क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां ख़मीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे. एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद. वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज की जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उदंदा रहो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक्कस गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में पहुंची, सर्च ऑपरेशन शुरू कर छोड़ियो। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, घरू वजीर मोहसिन नकवी ए बेन पारा चेक पोस्ट ते हमले की मजम्मत, इंसानी जानन की नुकसान ते दुख जो इजहार, दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी रखने वाले अजम जो भी बचाओ।

0: ॻाल्हियूं करण आहिनि त पहिरीं छो न थियूं कयूं वञनि की अकबर पख़्तूनख़्वा जे वॾे वज़ीर सहल आफ़रीदी वफ़ाक़ी हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जी आछ करे छॾी। पेशावर में सीनियर साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे सहल आफ़रीदी चयो त लॉन्ग मार्च में अञा 7 ॾींहं आहिनि, पोइ बि ॻाल्हियूं ई थियणियूं आहिनि त हाणे छो न थियूं कयूं वञनि। ॻाल्हियुनि लाइ पहिरीं बि तयारु हुआसीं, हाणे बि आहियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत असांजे एस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हि करे रही आहे। मुल्क में हिकु शख़्स जी ॻाल्हि हले थी जंहिंजो नुमाइंदो मोहसिन नक़वी आहे।
1: अफरीदी तरीके साथ के जब अपनी साथ हो चुके हैं, इन्होंने मायूस किया है अपने कारकुनान को भी, अपनी पार्टी को भी। इनके पास अब जवाब नहीं है कि ये सियासी तौर पे लीड कर सकें। और आप 5 अक्टूबर की डेट दें या 5 अक्टूबर 2000

0: डेट से, अब आपकी किसी डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बुजदिली, आपकी काफी, आपकी सियासी नाअहली, इंतजामी नाअहली तो थी मगर आपकी सियासी नाअहली भी अब साबित हो चुकी है। और सियासी तौर पर कोई मोबिलाइजेशन नहीं है केपीके के अंदर। हमने तो उसके मात्र अपनी तैयारी की कि आएंगे तो हमने अपने शहरियों का तहफ़ करना है, मगर ये बुजदिल ना है लोग जिनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा, ये अपनी सियासी साख मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। मगर सियासी तौर पे जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि सोहेल खान अफरीदी की रेट अपनी पार्टी पे खत्म हो चुकी है। इतनी सियासी कमजोरी कभी भी नहीं देखने में आई थी इन 13.5 साल में जितनी आप देखने में आई है।
1: पीटीआई जो 27 सेप्टेम्बर वो मार्च खोट जबल निकतो कुओ साबित थो है। सोहेल अफरीदी पहिरीं बि इंतज़ामी सतह ते नाकाम हो ऐं हाणे सियासी सतह ते बि फेल थी वियो आहे। समा वफ़ाकी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त सोहेल अफरीदीअ जी पंहिंजी पार्टीअ तां रिट ख़तम थी वई। पीटीआई जो दहशतगर्दनि सां बि गठजोड़ आहे जंहिं सबबि हमलनि जी मज़म्मत बि नाहे कंदी। अख़्तियार वली ख़ान चयो त पीटीआई खे लांग मार्च खां भॼणो ई हो त पोइ ऐलान छो कयो वियो हो।
2: फील्ड मार्शल सैयदा समुनीर सां सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान जी मुलाक़ात। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़। सऊदी अरब में शहरी ऐं इक़्तिसादी हंधनि ते हमलनि बाबति तीख अलन जी ॾे वठि कई वई। सऊदी दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान चयो आहे त मुलाक़ात दौरान मक्का दिफ़ाई मुआदे तहत थियल फ़ौजी सरबराहनि जी गॾजाणी जो बि जाइज़ो वरितो वियो। मक्का दिफ़ाई मुआदे खे अस्करी सहकार में तब्दील करण जो अज़म वरितो वियो।
3: Water must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede, or divert Pakistan's share of waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
1: भारत कंहिं बि ग़लति फ़हमीअ जो शिकार न रहे। पाकिस्तान जे हिसे जो पाणी रोकण या रुख मोड़ण वारी कंहिं बि कोशिश खे जंगी कदम सम्झो वेंदो। गडियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ जो चवणो हो त नदियूं क़ौमनि जी उञ उझाईंदियूं आहिनि, विरहाईंदियूं न आहिनि। सिंधु दरिया जो निज़ाम न रुगो पाकिस्तानी अवाम पर ख़िते लाइ ज़िंदगीअ जी ज़मानत आहे। भारत पारां सिंतास मुआदे खे हिकु तरफ़ मुअतल रखण वारे फ़ैसिले जो को बि क़ानूनी जवाज़ नाहे। कश्मीर पाकिस्तान जी शरग आहे ऐं रहंदो। कश्मीरियुनि जी सियासी ऐं सफ़ारत हिमायत जारी रखी वेंदी। पाकिस्तान, सऊदी ऐं तुर्कीअ जो दिफ़ाई मुआदो बि कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ न पर खेते जे अमन लाइ आहे।
2: अमरीका ऐं इसराइल ईरान खे कमज़ोर करण में नाकाम विया आहिनि। मुस्लिम मुल्कनि खे विढ़ायो पियो वञे। ईरानी क़ौम अमरीकी ऐं इसराइली साज़िश ख़िलाफ़ जमी बीठल आहे। अल जज़ीरा खे ॾिनल इंटरव्यू में ईरानी सदर मसूद पिज़िश्कियान चयो आहे त अमरीका ऐं इसराइल ख़िते जे कुझ मुल्कनि खे जंग में धिकियो आहे। अमरीका ख़िते जी दौलत ते कंट्रोल बरकरार रखण लाइ मुस्लिम मुल्कनि खे विढ़ाए रहियो आहे। यमन में थींदड़ शयुनि सां ईरान जो को बि तालुक़ नाहे। ईरान तकरार जे हल लाइ मदद ॾियण लाइ तयार आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: खुशखबरी हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलियत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम ऐह हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आ। क्लिनिक जो टाइम ऐह हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आ। एड्रेस सिंध होम्योपैथी।

आई चाहत जा चंग वजायो दिल जी गाल करनी आ चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ कराची का कश्मोर किंजर का कारूंजर ताई सुहिणी सिंधवासिन के आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पवे।

प्रोग्राम दिल जी गाल सां गॾु आऊं आहियां आबिद चौहान ऐं अव्हां ॿुधी रहिया आहियो जीए एफएम नेटवर्क। जीए एफएम नेटवर्क ऐं दिल जी गाल जे ॿुधंदड़नि सभिनी मानायतनि महबूबनि दिल रुबा दोस्तनि पिरी प्यारनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदी।

पहिंजी उम्र अजाई वई मींह फुड़ियूं थी आई वई। पहिंजी उम्र अजाई वई मींह फुड़ियूं थी आई वई। छांव छपर जी कहिड़ी ॾे, छांव छपर जी कहिड़ी ॾे, धरती आहे पराई वई। निम जा पन कका थी विया, निम जा पन कका थी विया, चार घड़ियूं हुई साई वई, पहिंजी उम्र अजाई वई। निम जा पन कका थी विया, चार घड़ियूं हुई साई वई, चंड मथा हूं मकलीअ ते, चंड मथा हूं मकलीअ ते, सारी रात सजाई वई, पहिंजी उम्र अजाई वई। मूं त चयो हो खॾु अथव, मूं त चयो हो खॾु अथव, हा पर विख वधाई वई, पंहिंजी उम्र अजाई वई। मूं त चयो हो खॾु अथव, हा पर विख वधाई वई, सारी सारी रात अयाज़ सोचे अख न लाई वई, पंहिंजी उम्र अजाई वई, मींह फुड़ियूं थी आई वई।

दोस्तों अच्युत है होमेरा चन्ना जी खूबसूरत आवाज में गीत बुधू था इश्क कहानी कजे कैसा जाने बो जाना न रहो।

0: बेकरारी इंतजारी में आसारी रात घारी, बेकरारी इंतजारी में आसारी रात घारी, जिक्र जाने मन जुबां ते आरुगो बस तुझो जारी। बेकरारी इंतजारी में आसारी रात घारी, जिक्र जाने मन जुबां ते आरुगो बस तुझो जारी। तू न आए ऐ न आयो चैन पल भर ऐ घड़ी खन, वाहड़े साजन वाह साईं वाह जो आहे तुझी यारी। दोस्तों वक्त थो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ब्रेक का पोए वरी वेंदासे। बुधंदा रहो GFM नेटवर्क।
1: इट्स 9:30 दिस टाइम चेक टू टाइम।

0: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज। जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।

0: सुनते हैं अपने
1: GFM 91.6।
2: It's 3 PM. This time check is brought to you by
3: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GFM 91.6।
6: खुशखबरी। हाँ, अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकरे तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो, सिख क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान